ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर सवेरे के 6 बजे हैं। अब आकाशवाणी से
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। 2 दिन की बैठक में 3 प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित

0: कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 6:05 और 15 सेकंड हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

इस नश्वर संसार में एक राम नाम ही शाश्वत और सत्य सनातन है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम का जप शांति और सुख प्रदाता है।

वो अगम है, अगोचर है, परंतु सर्वव्यापी है। वो हमारे बाहर भी है, भीतर भी है। उसके नाम अनेक हैं, किंतु वो स्वयं केवल एक है। उसका न कोई आकार है, वो निराकार है, लेकिन संसार उसका साकार रूप है।

0: प्रेम हरि को रूप है, त्यों हर प्रेम स्वरूप एक होए हैं यों लसे, ज्यों सूरज और धूप। इसके साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने साधना सरगम, मुकेश, सुमन कल्याणपुर और साथियों के स्वर में भजन सुने। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 6:25 हुए हैं। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी के विचार।
1: महापुरुषों के जीवन समुद्र से निकला एक एक चिंतन रत्न जीवन के अंधेरे क्षणों को प्रेरणा के आलोक से जगमगा देता है। हम यदि उनके चिंतन पर मनन करें तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। सच तो यह है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पथ ही महापुरुषों की विचार विधियों से होकर गुजरता है। ऐसे महापुरुषों में एक अत्यंत विशिष्ट नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, जिनके विचार आज भी वंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं। बापू ने कहा था, सत्य से प्राप्त वस्तु का संग्रह भी सत्य से हो सकता है। आज जब लक्ष्य को पाने के लिए हम उचित और अनुचित साधनों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर रहे हैं, गांधी जी का ये कथन हमें ये विचार करने पर विवश कर देता है कि यदि हमारा लक्ष्य सत्य का आचरण है तो उसकी रक्षा असत्य के द्वारा संभव नहीं। दूसरे शब्दों में, सत्य की नैतिकता अनैतिक साधनों से दूषित हो जाती है। वर्तमान समय में जबकि भौतिक सुखों की चखाचौंध में हम किसी भी लक्ष्य को कैसे भी प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तब बापू के इस कथन को ध्यान में रखकर हमें अपने लक्ष्य के निर्धारण में तो सत्य की उपस्थिति का ध्यान रखना ही होगा। इसके साथ ही सत्य पर टिके उस लक्ष्य की रक्षा के लिए भी ऐसे साधनों की तलाश करनी होगी जो सत्य पर आधारित हों। आज चारों ओर हिंसा का एक उन्माद सा छाया हुआ है। हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को हिंसा का ये डरावना अंधकार धीरे धीरे निगलता जा रहा है। आज हम अहिंसा की क्षमता को भूल गए हैं। गांधी जी ने कहा था, सच्ची अहिंसा में इतनी अधिक शक्ति है कि भीषण से भीषण हिंसा उसके मुकाबले में टिक नहीं सकती। सत्य तो यह है कि अहिंसा के आचरण से हम में एक ऐसा नैतिक बल आ जाता है जिससे हम निडर होकर किसी भी प्रकार के हिंसक आचरण का सामना कर सकते हैं। हिंसा तो वो करते हैं जो अपनी आत्मा से दुर्बल होते हैं, जो दूसरों से और अपने आप से भी भयभीत होते हैं। जब

0: हम आत्मबल के आधार पर एक बार अहिंसा को स्वीकार कर लेते हैं, तब हिंसा को हमारे आगे घुटने टेकने ही होंगे। हिंसा के इस उन्मादी दौर में यदि हम अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखकर अहिंसा की शक्ति को पहचान ले तो सचमुच हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तब हिंसा का हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान नहीं रहेगा और हम व्यक्ति से लेकर विश्व तक प्रेम की अमृत धारा प्रवाहित कर सकेंगे। आज हम भौतिकता को जीवन का मूल्य मान बैठे हैं। भौतिकता के इस प्रसार ने हमें इतना स्वार्थी बना दिया है कि हम अपने सुख और भोग विलास के लिए अधिक से अधिक साधनों का संग्रह करने की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। बापू ने कहा था, सुवर्ण नियम यह है कि जो चीज लाखों को नहीं मिल सकती उसे लेने से हम दृढ़ता पूर्वक इनकार करते हैं। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को बचाए रखने के लिए गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं हो जाता कि इन निर्धन भाइयों के कष्टों से सच्ची सहानुभूति रखते हुए हम अधिक से अधिक भोग विलास की वस्तुओं के संग्रह पर अंकुश लगाएं? बापू की दृष्टि में सारा विश्व एक था। बापू कहते थे, अस्पृश्यता सहस्त्र फणों वाला एक सर्प है और जिसके एक एक फन में विषैले दांत हैं। आज ये सहस्त्र फणों वाला सर्प हमारे पूरे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को विष में बना रहा है।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 8 बजे हम प्रसारित करेंगे संसद में आज होने वाली कार्यवाही की समीक्षा और रात 10 बजे आप सुन सकेंगे संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 8:20 पर हम आपको सुनवाएंगे विधानमंडल समीक्षा और 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर डीपी सिंह की वार्ता। विषय रहेगा खरीफ में पत्ता गोभी की खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता की लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी, शिशुओं में सूखा रोग कारण और बचाव। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे 7:31 पर। आज के कलाकार, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा पूर्वाह्न 11 बजे। आज ये कार्यक्रम प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री काजोल पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत हम प्रसारित करेंगे 11:30 पर। इस कार्यक्रम में आज का विषय है सोशल मीडिया के प्रयोग में सावधानियां। दूसरा विषय रहेगा आइए बने जल मित्र। दिन में 1:15 पर हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार। इस कार्यक्रम में आज चर्चा की जाएगी वर्षा ऋतु में सावधानियां विषय पर। क्रम रहेगा मेरी माटी मेरा देश और इसका विषय रहेगा लखनऊ की चिकनकारी। इसी कार्यक्रम में एक कहानी सुनवाई जाएगी, शीर्षक होगा गौरी और कहानीकार होंगे सुश्री नम्रता सिंघल। क्रम रहेगा कुछ तुम कहो कुछ हम।

युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे हमारे युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा संग्रहालय अनुदान योजना। क्रम रहेगा आज का सवाल और इसी कार्यक्रम में एक लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी, भारत में सतत और समावेशी रोजगार सृजन। वार्ताकार होंगे सुश्री गौरवी। क्रम रहेगा आइए जाने जीने की कला और आज के हम सफर। ग्रामीण लोक कार्यक्रम में 6:00 बजे चर्चा का विषय रहेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। डॉक्टर नेत्रपाल सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी, उर्वरकों का कैसे करें संतुलित प्रयोग। मौसम की जानकारी दी जाएगी, मंडी भाव बताए जाएंगे और लोकगीत भी प्रसारित किए जाएंगे। मजदूर मंडल कार्यक्रम में 6:30 बजे हमारे श्रमिक श्रोता सुनेंगे चर्चा सभ्यताओं के बीच संवाद की आवश्यकता। काव्य पाठ सुनवाया जाएगा, कवि होंगे सर्वेश कुमार यादव। क्रम रहेगा आज का प्रश्न ज्ञान सागर, कुछ सेहत भरे टिप्स दिए जाएंगे और फिल्मी गाने भी सुनवाए जाएंगे। विविधा कार्यक्रम में 7:10 पर आप सुनेंगे श्री दिलीप रघुवंशी की वार्ता। विषय रहेगा आधुनिक हिंदी नाटकों में इतिहास बोध। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश 7:31 पर। सदाबहार फिल्मी गाने आप सुनेंगे गीतांजलि कार्यक्रम में 8:45 पर और सुर सरिता कार्यक्रम में 10:00। पुराने फिल्मी गीतों का आप आनंद ले सकेंगे। 9:25 पर कार्यक्रम होगा गीत मंजूषा। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी, सुशील, धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कांड। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। दिन भर की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर डीपी सिंह की वार्ता। विषय है खरीफ में पत्ता गोभी की खेती।
1: भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें हर प्रकार की जलवायु, अनेक प्रकार की मृदा, प्रत्येक फसल लगभग वर्ष वर्ष देश के किसी न किसी भूभाग में उगाई जाती है। इसी का कारण है कि आवागमन के द्रुतगामी साधनों के कारण प्रत्येक फल, सब्जी वो अन्य खाद्य वस्तुएं वर्ष भर बाजार से प्राप्त की जा सकती हैं। कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में या कुछ बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जबकि कुछ केवल समशीतोष्ण जलवायु में ही उगाई जा सकती हैं। किंतु अब वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों को की ऐसी किस्में तैयार की हैं जो प्रत्येक जलवायु में उगाई जा सकती हैं। इस कारण भी कुछ सब्जियाँ जो गैर मौसम की होते हुए समय से भी देखने को मिलती हैं, उपभोक्ताओं को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं बाजार में कहाँ से उपलब्ध हुई हैं। ऐसी सब्जियों में से गोभी भी एक है। पहले गोभी अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रबी की फसल के रूप में उगाई जाती थी, किंतु गोभी की, खासकर फूल गोभी की, इस मैदानी क्षेत्रों के लिए ग्रीष्मकाल में एक बियर लगाकर जुलाई माह में रोपाई कर अक्टूबर माह में गोभी के फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। किंतु पत्ता गोभी की खरीफ के लिए बहुत अगेती किस्में जिन पर अभी परीक्षण हो रहा है, जहाँ तक फूल गोभी की नर्सरी में बीज मध्य जून में जबकि तापक्रम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, पूसा दीपाली और पूसा कार्तिकी व पूसा क्वारी का डालकर इसकी रोपाई 4-5 सप्ताह बाद कर सकते हैं। किंतु ये पत्ता गोभी के मामले में नहीं है, क्योंकि अभी तक इसकी इस प्रकार की किस्में उपलब्ध नहीं हैं। पत्ता गोभी की अगेती किस्मों की नर्सरी अगस्त सितंबर में तथा पिछेती किस्मों की नर्सरी सितंबर अक्टूबर में तैयार करने के लिए बीज बोने की आवश्यकता होती है। पत्ता गोभी की वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए कुछ खास खास बातें हैं जिसकी ओर किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो ये हैं कि पहले आप भूमि व भूमि की तैयारी की ओर ध्यान देंगे। यूँ तो पत्ता गोभी सभी प्रकार की भूमि में जो उर्वर है और उसकी अच्छी उर्वरा शक्ति है और उचित जल निकास वाली है उसमें लगाएं, किंतु दोमट भूमि में अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। इसमें एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2-3 जुताइयां देसी हल से कर भूमि को भुरभुरा बना लें। पौध लगाने से पहले 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर का खाद खेत में मिला दें। जहाँ तक किस्मों का सवाल है, सिंचित स्थिति में अगेती किस्मों में गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ

इंडिया हाइब्रिड 10, 20, 30, 40, 50 अच्छी किस्में हैं, जबकि पिछेती किस्मों में पूसा, ड्रमहेड व मुक्ता का चयन करें। इनका बीज अगेती किस्मों के लिए 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें, जबकि पिछेती किस्मों के लिए इसका बीज 375 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। बीज के उपचार करने के लिए आप कैप्टान या थीरम, जिसकी 2-3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के लिए पर्याप्त होगी, इस्तेमाल करें। जहाँ तक नर्सरी तैयार करने का सवाल है, 9 वर्ग मीटर की पौध सैया के लिए 2-3 ग्राम बीज पर्याप्त होगा। पौध सैया 15 सेंटीमीटर उठी हुई ऐसे स्थान पर बनाएं जो धूप से बचाई जा सके। ध्यान रहे कि पौध सैया के चारों ओर 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट चौड़ी नाली अवश्य बनाएं। साथ ही पौध सैया में बीज 1 से 1.25 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए लगभग 60 वर्ग मीटर क्षेत्र की नर्सरी की पौध की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 4 से 6 सप्ताह की पौध की रोपाई अगर अगेती आप करना चाहते हैं तो सितंबर सितंबर माह में और पिछेती की अक्टूबर माह में कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पौध की कम से कम जो जो म्याद है वो 4 से 5 सप्ताह की अवश्य होने की ज़रूरत है, और अगर 6 सप्ताह की भी है तो भी आप लगा सकते हैं। पौधों की रोपाई करने के लिए अगेती में पंक्ति से पंक्ति की दूरी थोड़ी कम रखने की ज़रूरत है, यानी कि 1.5 फिट यानी कि 45 सेंटीमीटर, जबकि पिछेती के लिए 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फिट रखें, और पौधे से पौधे की दूरी केवल 45 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 फिट रखें। इस प्रकार पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए पौधों की संख्या 1 हेक्टेयर में अगेती में लगभग 3,700, क्षमा करिएगा, 37,000 से और 38,000 तक पौधे आएंगे, जबकि पिछेती में यही पौधे की संख्या कुछ कम रहेगी। पत्ता गोभी में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कितना पोषक तत्व हम डालें, क्योंकि इस फसल के लिए अच्छी पैदावार के लिए संतुलित उर्वरकों की आवश्यकता है, संतुलित खाद की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप 150 किलो नत्रजन, 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और लगभग इतनी ही मात्रा में पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। ध्यान रहे कि नत्रजन की आधी मात्रा व फास्फोरस और पोटैश की पूरी मात्रा पौध लगाने के समय, और शेष नत्रजन की मात्रा खड़ी फसल में पौध रोपने के लगभग 6 सप्ताह बाद खेत में लगाएं। पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। बाद में 6 से 8 दिन के अंतराल पर यदि वर्षा न हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। स्मरण रहे कि अधिक दिन तक आवश्यकता होने पर भी अगर सिंचाई न हुई तो इसके जो गोभी है वो सिकुड़ जाएगी, और एक अधिक अंतराल पर यदि आपने फिर सिंचाई की तो गोभी फूट सकती है, फट सकती है। अतः सिंचाई का इस गोभी के मामले में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि यह एक बरसाती फसल है अतः 2-3 बार निराई करने की आवश्यकता है, और यह भी ठीक रहेगा कि आप उसमें गुड़ाई कर डालें ताकि खेत में कीट न रहें और गोभी को इन कीट पतंगों से हानि न होने पाए। पत्ती भक्षक गिड़ारें का खास तौर से खा नुकसान पहुँचाती हैं। इनको कभी कभी गांव की भाषा में गोभी की तितली या स्वर्ण पीट पतंगा कहते हैं। गोभी के पत्तों को बहुत हानि पहुंचाती है, क्योंकि यही एक सब्जी की फसल है और पत्ते ही काम आते हैं, इसलिए उन्हें नष्ट करने की अति आवश्यकता है। तो आप गोभी बनने से पहले मेलाथियान 5% अथवा कारवेल 4% चूर्ण की 20 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुरकाव कर दें। फूल बनने के बाद एंडोसल्फान 35 cc, 1.5 मिलीलीटर अथवा मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका घोल बना लें और उसका छिड़काव करें तो ये गिरार नष्ट हो जाएगी। कई बार माहू भी पत्तियों पर रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है, इसके लिए मेलाथियान का 5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुरकें, अथवा मेलाथियान 50% 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर, और माहू की अगर कीड़े दिखाई दें तो छिड़काव कर डालें। कीड़ों के अलावा कुछ बीमारियां भी प्रकोप उनका प्रकोप भी होता है, तो उसके लिए भी कुछ आवश्यकता है कि आप इसकी ओर ध्यान दें। आंध्र गलन रोग एक आता है जो अगेती नर्सरी की अवस्था में लगता है, जिसके बचाव के लिए बीज को यूँ तो आपने थिरम या कैप्टान से उपचारित किया होगा, इससे इस बीमारी को रोका जा सकता है। एक दूसरा रोग दिखाई देता है, काला सड़न रोग। पौधों के पत्तियों के किनारे पर टी शेप यानी टी के आकार के चकत्ते दिखाई देते हैं और शिराएं कभी कभी काली दिखाई देती हैं। इसकी रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जिसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि अंगमारी रोग दिखाई दे तो डाइथेनम 45 2 ग्राम,
एक लीटर पानी में घोल।

0: का छिड़काव करने से इस बीमारी को रोका जा सकता है। अगेती किस्म के फूल नवंबर में और पिछेती के दिसंबर में प्राप्त हो जाते हैं। गोभी का तुड़ाव तभी करें जब गोभी ठोस और पूर्ण विकसित हो। पत्ता गोभी के विषय में जो अभी आपको वैज्ञानिक संस्कृतियों के बारे में बताया है, यदि इनको ध्यान में रखकर आप खरीफ की गोभी की काश्त करेंगे तो आप प्रति हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ क्षेत्रफल से अगेती किस्म की पैदावार 200 से 250 क्विंटल और पिछेती किस्म की पैदावार 300 से 400 क्विंटल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डीपी सिंह की वार्ता। विषय था खरीफ में पत्ता गोभी की खेती। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आपको एक बार फिर याद दिला दें, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता की लघु वार्ता। विषय रहेगा शिशुओं में सूखा रोग, कारण और उपचार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:30 पर। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा सोशल मीडिया के प्रयोग में सावधानियां। दूसरा विषय रहेगा आइए बने जल मित्र। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 6:55 होने को हैं। अब आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार सुनेंगे।

0: इत्येते विषयाः सम्मिलिताः सन्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् एतद् उपवेशनं ब्रिक्स अध्यक्षतावधौ सांस्कृतिक सहभागितायाः सुदृढीकरणे तथा संस्कृति माध्यमेन समावेशी सतत विकासं संवर्धयितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति। ब्रिक्स शिक्षा मन्त्रिणां त्रयोदशोपवेशनं तथा तृतीयं ब्रिक्स वरिष्ठाधिकारिणाम् उपवेशनम् अद्यारभ्य अस्य मासस्य सप्तमदिनाङ्कपर्यन्तम् ओडिशा राज्यस्य भुवनेश्वरे आयोजयिष्यते। शिक्षा मन्त्रालयेनोक्तं यत् एतेषु उपवेशनेषु ब्रिक्स सदस्य देशानां शिक्षामन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः तथा प्रतिनिधिमण्डलानि अपि भागं भजिष्यन्ति। उपवेशनावधौ सहकार्य सम्बद्धेषु विविध विषयेषु विचार विमर्शः भविष्यति। तेषु प्रारम्भिक बालशिक्षायाः बालपरिचर्यायाः च सुदृढीकरणं कौशलविकासस्य संवर्धनं परस्पर सहकार्यस्य वर्धनं तथा संयुक्तानुसन्धानस्य नवोन्मेषस्य नवोद्यमानां च प्रोत्साहनं प्रमुखतया समाविष्टानि सन्ति। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी त्रयोदशे ब्रिक्स शिक्षामन्त्रिणाम् उपवेशने भागं ग्रहीष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालययोः अतिवृष्ट्यै रक्तवार्णिकी सञ्चेतना प्रख्यापिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। हमले के बाद ये जहाज कल यमन तट से दूर लाल सागर में डूब गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने यमन के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी थी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। ये नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन

0: comes at a crucial juncture amid persistent geopolitical tensions and a hawkish U.S. Federal Reserve. The RBI is expected to hold the core repo rate unchanged at 5.25%. India, as chair of BRICS 2026, will host the third BRICS Culture Working Group meeting in Bhopal from today till the 6th of August. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build a consensus on key areas ahead of the BRICS Culture Ministers meeting. Meanwhile, the 13th BRICS Education Ministers meeting and the third BRICS Senior Officials meeting will also be held from today till the 7th of this month in Bhubaneswar, Odisha. Education Ministry said that these meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. The Medical Counselling Committee will begin round one registration for NEET UG Counselling 2026 today. According to the official schedule, round one registration and fee payment will remain open from 5th of August to 12th of August until 3 p.m. The summer annuals of Amrit Udyan at Rashtrapati Bhavan will open for the public from the 16th of this month. People can visit the Amrit Udyan till the 15th of September. During this period, it will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. However, the Udyan will remain closed on all Mondays for maintenance. Entry to Amrit Udyan will be free of cost. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता की वार्ता। विषय है शिशुओं में सूखा रोग, कारण और उपचार।
2: बच्चों में प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन दिनों आम होती जा रही है। बार बार सर्दी, खांसी और बुखार इसका मुख्य लक्षण है। एलोपैथी में इसका उपचार काफ़ी लंबा चलता है और कई बार वांछित लाभ के बजाय दवाएं अपना कुप्रभाव छोड़ने लगती हैं। होम्योपैथी में यह रोग आसानी से ठीक किया जा सकता है। जिनके वंश में टीवी का इतिहास हो, अगर उस वंश की गर्भवती माता को वैसलिनम या ट्यूबरक्लिनम औषधि दे दी जाए तो आने वाली शिशु को इस रोग से बचाया जा सकता है। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स श्वसन संस्थान की इस बीमारी का नाम उन लोगों के लिए नया नहीं है जिनके बच्चे कभी कभी खांसी व प्रायः सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं। 2-3 महीनों से सर्दी जुकाम की तकलीफ को सहन करते हुए अपने बच्चों को लेकर जब आप अपने चिकित्सक के पास पहुँचते हैं तो वह आपसे संदेह व्यक्त करता है कि प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हो सकता है और फिर आप उसकी बात सुनकर डर भी जाते हैं कि कहीं यह तथाकथित प्राइमरी कॉम्प्लेक्स क्षय रोग यानी टीबी का रूप न अख्तियार कर ले। आपके इस डर का लाभ उठाकर कई बार आवश्यक परीक्षण कराने के पहले ही आपका प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के लिए इलाज शुरू कर दिया जाता है। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है क्या? प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ट्यूबरक्लोसिस का अर्थ है कि टीबी रोग के जनक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का आक्रमण, जिसमें इस रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं है और यह सिर्फ 7-10 में ही रोग वृद्धि होती है, बाकी में इस जीवाणु के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। प्रारंभ में यह लक्षहीन होता है लेकिन 2-8 सप्ताह के बीच बुखार, वजन में कमी, भूखने लगना इत्यादि लक्षण ओवर आते हैं। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स क्यों और कैसे होता है? ट्यूबरक्लोसिस इस रोग के लिए कारण बनता है। बच्चों में इस रोग का संक्रमण किसी टीबी रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने पर होता है। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स संक्रामक नहीं है क्योंकि ऐसे बच्चे न तो खांसते हैं और न ही उनमें खकार होती है। ट्यूबरक्लोसिस या तो श्वसन संस्थान में श्वास द्वारा प्रवेश करते हैं या फिर पाचन संस्थान अथवा त्वचा द्वारा प्रवेश पाते हैं। यह आक्रमण प्राय उन बच्चों में ज़्यादा होता है जिनमें कुपोषण, अक्षक्षुता, उल्टी, दस्त या अन्य संक्रामक बीमारियों का बार बार आक्रमण तथा चोट इत्यादि लगने से रोग की प्रतिरोधक क्षमता अत्यंत कम हो जाती है। ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया

0: सांस द्वारा प्रवेश के साथ ही फेफड़ों में उनकी वृद्धि के साथ फेफड़ों के ऊतक का शोध शुरू हो जाता है। इसे प्राइमरी फोकस कहते हैं। यह लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है, कभी कभी इससे बड़ा भी हो सकता है। इनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। फेफड़ों से फिर ये बैक्टीरिया लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं और स्पेसिफिक इम्यूनिटी होने के पूर्व ही रक्त द्वारा ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं और इस अंतराल में इनसे कोई विषैला पदार्थ नहीं निकलता, इसलिए उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते। लक्षणों के आधार पर इसे 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। ए सिम्टोमेटिक, जिसमें 75 से 80% केसों में कोई लक्षण नहीं पाए जाते। दूसरा फेब्राइल, इसमें कुछ रोगियों में सिर्फ बुखार हो सकता है जो 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं बढ़ता। इस दौरान यदि हम रक्त की जांच कराएं तो उसमें WBC की संख्या सामान्य होती है परंतु ESR बढ़ा हुआ होता है। तीसरा होता है एलर्जिक, इसमें रोगी को एरिडेमिया नोडस या कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। चौथा प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का संदेह तब किया जाता है जब रोग 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़े, वजन में लगातार कमी हो, भूखने लगे, पीलापन, खांसी इत्यादि शुरू हो जाए। ऐसे में बच्चे को अब TB, निमोनिया, प्लूरसी आदि रोग हो सकते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता की वार्ता। विषय था शिशुओं में सूखा रोग, कारण और उपचार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं समवेश्वर में ये देशभक्ति परक गीत।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं समविश्वर में देशभक्ति परक गीत। समय मिला लीजिए, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 7:18 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।

0: www.radio.co.in।
1: ये आकाशवाणी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। अब और सख्त हो जाएंगे विलंबित पंजीकरण के प्रावधान। प्रदेश सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240,97,00,000 रुपए की मदद अंशदान के रूप में मिलेगी।
4: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399,50,00,000 रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620,04,00,000 रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107,88,00,000 रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942,73,00,000 रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022,27,00,000 रुपए और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए

0: करीब 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अनुपूरक बजट में प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को भरोसा दिलाया कि यह बजट प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
2: सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स है, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स है उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हो उनको करवाना, इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
1: उधर सदन में अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और वेल में आकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि यह आचरण सदन की अवमानना है।
3: अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया।
1: वहीं मानसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में उर्वरक व बीज का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि खाद व बीज किसानों को समय से नहीं मिल पा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक कल लखनऊ में संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हो गई।
4: यह बयान ब्रिक्स सदस्य देशों में सांख्यिकीय ढांचे को अधिक मजबूत, पारदर्शी और नीति प्रासंगिक आधिकारिक आंकड़ों के लिए आधार तैयार करता है। बैठक के दूसरे दिन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया ने आधिकारिक आंकड़ों, क्षमता निर्माण और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञान के आदान प्रदान, तकनीकी और पद्धतिगत प्रगति, मानव संसाधन विकास, AI, मेटा डेटा मानकीकरण और ओपन डेटा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षाविद, थिंक टैंक, नागरिक समाज संगठन और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे। श्री शेखावत ने यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के पश्चात सारनाथ में धार्मिक स्तूप सहित पुरातात्विक खंडहरों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की।
5: निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्य का विषय हम सब के लिए है, वाराणसी के लोगों के लिए निश्चित रूप से, लेकिन देश भर के लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सारनाथ की ये पुरातात्विक महत्व की संपदा, ये स्थल, ये पवित्र स्थल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में नामित हुआ है।
1: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और शामली सहित

0: राज्य के कई जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खेतों में खड़ी कुछ फसलों के लिए भी यह बारिश लाभकारी मानी जा रही है।
1: जनपद हापुड़ में सावन मास की पहली तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखाई दी। किसानों के खेतों में खड़ी गन्ना धान सहित सभी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी बताई जा रही है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत युवा संगम के 7वें संस्करण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया है। मंत्रालय ने बताया कि इसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। अब और सख्त हो जाएंगे विलंबित पंजीकरण के प्रावधान। प्रदेश सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। जिंदगी की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मौसम काफी बदल गया है कल से, या यूं कहें कि आसमान पर छाए काले बादल और बादलों की ओट में छिपा हुआ सूरज, कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश। दिन भर झरती बूंदों ने ताज नगरी में यानी आगरा में पहाड़ों जैसा मौसम बना दिया। कल यानी मंगलवार को आगरा में उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून और नैनीताल जैसा मौसम महसूस किया गया। इस मौसम में लंबे अंतराल के बाद कल दोपहर बादल जब मेहरबान हुए तो गर्मी और उमस से राहत मिल गई। लगातार पसीने और उमस से परेशान लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बादलों की मेहरबानी सोमवार से ही और रात से लेकर मंगलवार सुबह और दोपहर तक निरंतर रही। इस दौरान सूरज बादलों के बीच से निकलने की कोशिश जरूर करते रहे लेकिन उन्हें निकलने नहीं दिया गया। हालांकि बीच बीच में बारिश थमी लेकिन फुहारों और बूंदाबांदी का सिलसिला तो लगातार चलता ही रहा और मौसम इतना सुहाना और मनभावन हो गया कि लोगों को घर से बाहर निकलने में हल्का हल्का ठंड का भी एहसास होने लगा। श्रोताओं, ये अगस्त का महीना चल रहा है और हम सब जानते हैं कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। जब बात हम स्तनपान की करते हैं तो माँ और बच्चे का जो संबंध है वो हमें अनायास ही याद आ जाता है और कहते हैं कि संसार में माँ के जैसा कोई भी नहीं। माँ और शिशु का संबंध संसार के सबसे पवित्र और आत्मीय संबंधों में से एक है और ये माँ और बच्चे का

संबंध केवल जन्म देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि जन्म के बाद उसके पालन पोषण, सुरक्षा, प्रेम और संस्कारों से बहुत ही सशक्त बनाया जाता है। मां की गोद में शिशु को जो सुरक्षा और स्नेह अपनापन मिलता है, वही उसके व्यक्तित्व की पहली नींव बनती है। और इस वात्सल्य की सबसे सुंदर जो अभिव्यक्ति है, जो सबसे सुंदर बात है, वो है स्तनपान। स्तनपान केवल शिशुओं के लिए भोजन नहीं है, बल्कि मां की ममता, प्रेम, सुरक्षा, या यूं कहें कि ये जीवन का बच्चे के लिए पहला उपहार है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त ऐसा अनमोल उपहार है जो शिशु को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज विज्ञान भी ये मानता है कि मां का दूध नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। मां के दूध में वो सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। शिशु के जन्म लेते ही वो सबसे पहले अपने मां की आवाज, स्पर्श और धड़कनों को पहचानता है। और जब कोई मां अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर, गोद में लेटाकर स्तनपान कराती है, तब उस शिशु को केवल दूध ही नहीं मिलता, बल्कि प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का एक अनुभव भी होता है। और यही अनुभव उसके जीवन की पहली एक भावनात्मक शिक्षा बन जाता है। स्तनपान के दौरान मां और शिशु के बीच आंखों का संपर्क, त्वचा का स्पर्श और स्नेहपूर्ण संवाद एक ऐसा बंधन स्थापित करता है जो जीवन भर दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाता है। मां का वात्सल्य शिशु के मन में आत्मविश्वास, संतुलन और सुरक्षा की भावना को विकसित करता है। यही वजह है कि स्तनपान को मातृत्व का सबसे कोमल और पवित्र रूप माना जाता है। जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है और विज्ञान की भाषा में इसे हम शिशु का पहला टीका भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। मां का दूध केवल शरीर का ही नहीं, बल्कि मस्तिष्क का भी पोषण करता है। इसमें जो मौजूद तत्व हैं, वो पूरे मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चे को स्वस्थ बनाते हैं। और फिर स्तनपान एक प्राकृतिक, सुरक्षित और बहुत ही किफायती व्यवस्था है प्रकृति की। इसके लिए किसी विशेष उपकरण, बोतल, ईंधन या अधिक खर्च की आवश्यकता होती ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात, मां का दूध सदैव स्वच्छ और बच्चे के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। जबकि अगर देखा जाए तो बाजार में बिकने वाले जो कृत्रिम दूध हैं या फॉर्मूला पर आधारित जो दूध हैं, वो किसी भी तरह से बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हर मां को यह चाहिए कि जन्म लेने के तुरंत बाद अपने बच्चे को मां स्तनपान कराए। और जैसे हमने कहा है कि प्रतिरोधक क्षमता का एक बहुत बड़ा जो टीका होता है, वो अपने बच्चे को उपलब्ध कराए, क्योंकि न तो मां के जैसा दूध संसार में कहीं और है और न ही मां के जैसा कोई रिश्ता है।

0: हवा दुखों की जब आई कभी खिजां की तरह, मुझे छुपा लिया मिट्टी ने मेरी माँ की तरह। आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास, अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद आसपास की सूचनाएं आपके लिए।
1: सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा कर आप सभी का स्वागत है।

0: सूफी संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती एफएम के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद डीटीएच सेवा के साथ।
1: देश के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी डीटीएच के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
0: बस डीटीएच सेवा का उठाए लाभ,
1: आपकी हर सांस के साथ साथ डीटीएच सेवा 2400 घंटे रहे आपके पास।
0: डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, डीटीएच सेवा है जहां।
2: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में अब किसी भी कर्मचारी को तय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा। नौकरी छोड़ने या सेवा समाप्त होने पर उसका पूरा बकाया 2 दिन के भीतर चुकाना होगा। तय समय से अधिक काम लेने यानी ओवर टाइम पर 2 गुनी दर से भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। इन बड़े बदलावों वाली उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता 2025 को मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। नई संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में वेतन भुगतान और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। संविदा श्रमिकों की मजदूरी और बोनस का भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी मुख्य नियोक्ता की होगी। वेतन देने से पहले वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा और कर्मचारी की मृत्यु होने पर बकाया राशि उसके नामित व्यक्ति या वैधानिक उत्तराधिकारी को दी जाएगी। प्रदेश में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का रास्ता साफ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रतिकर भुगतान का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के लाखों कामगारों और सेवायोजकों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी मिल गई है। इसके लागू होने के बाद अब किसी भी पात्र कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, प्रतिष्ठान या नियोजन में कार्यरत हो। संहिता में प्रावधान किया गया है कि कुल वेतन का कम से कम 50% मूल वेतन होगा। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 की प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और दस्तावेजों का सत्यापन भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार केवल एक नोडल सेंटर पर चयन कर सकेगा। ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क 2000 रूपये निर्धारित किया गया है, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। सीटों के विकल्प भरने के लिए सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए हाईटेक इंतजाम करने जा रहा है। अब आयोग की परीक्षाओं में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे, ताकि मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए किसी भी प्रकार की नकल या बाहरी संपर्क की संभावना पूरी तरह समाप्त की जा सके। अभी परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्कैनर और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाती रही है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक कक्ष में जैमर लगेगा। आयोग अभ्यर्थियों के सत्यापन को भी और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था काफी पहले लागू कर दी गई थी। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अभ्यर्थियों के पंजीकरण को आधार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे फर्जी अभ्यर्थियों पर रोक लगाने और चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के विद्यालय राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन भागीदारी के केंद्र बनेंगे। प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से विस्तृत कार्ययोजना जारी की है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के अनुसार स्वतंत्रता दिवस को जनभागीदारी, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का

व्यापक अभियान बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में छात्र, शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 14 अगस्त को विद्यालयों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अंतर्गत व्याख्यान, परिचर्चा, प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छात्रों को भारत विभाजन की ऐतिहासिक परिस्थितियों, उसके मानवीय प्रभाव और राष्ट्रीय एकता के महत्व से अवगत कराया जाएगा। 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विद्यालयों में निबंध, चित्रकला, भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी और तिरंगा यात्राओं सहित विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दो महत्वपूर्ण राहतें दी हैं। वित्त विभाग ने अवकाश यात्रा सुविधा के नियमों में बदलाव करते हुए 15 दिन का अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होने की व्यवस्था खत्म कर दी है। इसके साथ ही एलटीसी के दौरान स्वीकृत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मंजूर कर दी गई है। कर्मचारियों को मिलने वाली शिक्षा संबंधी सहायता के लिए पात्रता को संशोधित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 3 तक बढ़ा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों की शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की सीमा भी दोगुनी कर 600 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा कर दी गई है। शासनादेश के मुताबिक अब अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपयोग करना अनिवार्य नहीं होगा। ये बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे कर्मचारी बिना 15 दिन का अर्जित अवकाश लिए भी एलटीसी का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा एलटीसी के लिए स्वीकृत अर्जित अवकाश अधिकतम 10 दिन तक के नकदीकरण की सुविधा भी राज्य कर्मचारियों को दी गई है। स्पष्ट किया गया है कि पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एलटीसी के दौरान अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी। अब यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। एलटीसी से जुड़ी अन्य शर्तें और प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन परीक्षा 2025 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। हवलदार पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए 8,071 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। एसएससी के मुताबिक संदिग्ध गतिविधियों के कारण 2 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। परीक्षा के बाद की जांच में 727 अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए गए। विभिन्न कारणों से 169 अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय कार्यालयों ने अयोग्य घोषित किया है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन और एंटी रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का पर्याप्त स्टॉक रखना अब अनिवार्य होगा। मरीज के अस्पताल पहुंचने पर वैक्सीन उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी का नया पाठ्यक्रम जारी किया है। इसमें कई विषयों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के अनुसार प्रवक्ता संस्कृत के पाठ्यक्रम में वैदिक साहित्य को जोड़ा गया है। इसमें ऋग्वेद संहिता के अग्निसूक्त, विष्णु सूक्त, प्रजापति और इंद्र सूक्त शामिल किए गए हैं। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की ऑनलाइन आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 7 अगस्त की रात 12 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले यह तिथि 4 अगस्त निर्धारित की गई थी। इसके साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरने में त्रुटि होने पर उसे सुधारने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा। नोडल अधिकारी के अनुसार जनपद में इस वर्ष विभिन्न राजकीय एवं निजी आईटीआई की करीब 2,500 सीटों पर प्रवेश होना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2026 सत्र में प्रवेश के लिए एक बार फिर तिथि में विस्तार किया गया है।
अब छात्र 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार रोजगार परक पाठ्यक्रमों में

छात्रों का रुझान तेजी से बढ़ा है। विशेषकर बीबीए रिटेलिंग और बीबीए सर्विसेज छात्रों की पहली पसंद बने हुए हैं। छात्र ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जनपद की 690 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की दिशा में भारत संचार निगम तेजी से काम कर रहा है। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड फाइबर की अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जा रही है। इससे गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाएं डिजिटल माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5 कनेक्शन दिए जाएंगे। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र अनिवार्य रूप से शामिल हैं। बाकी 4 केंद्रों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। इनमें पंचायत भवन, स्कूल, राशन की दुकान और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में इंटरनेट पहुंचने से बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू की जा सकेगी। अन्य केंद्रों पर भी सस्ती दर पर अधिक डेटा और तेज स्पीड वाला इंटरनेट उपलब्ध हो सकेगा। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए की जा रही है। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, एक रूप और विवाद मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती नियमावली 2025 लागू कर दी है। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों का निर्धारित भारांक जोड़कर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। इससे मूल्यांकन प्रणाली को लेकर उठने वाले सवालों पर काफी हद तक विराम लगने की उम्मीद है। अब तक विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के नियम अलग अलग थे। इससे चयन प्रक्रिया में एक रूपता का अभाव दिखाई देता था। नई नियमावली लागू होने के बाद आयोग ने चयन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और मानकीकृत स्वरूप देने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के अनुसार भर्ती में 450 अंकों की लिखित परीक्षा और 50 अंकों का साक्षात्कार होगा। हालांकि अंतिम चयन केवल प्राप्त अंकों के साधारण योग के आधार पर नहीं होगा। आयोग ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अलग अलग भारांक निर्धारित किए हैं। जिलाधिकारी आगरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कानून का उल्लंघन करने वालों और अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट, टेम्पर नंबर प्लेट और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पकड़े जाने पर संबंधित के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए और वाहनों को सीज किया जाए। और अब आसपास कार्यक्रम में खोई हुई व्यक्तियों के बारे में कुछ सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार अनुज गुप्ता, पुत्र राधारमन गुप्ता, निवासी नयाबास, थाना लोहा मंडी, जनपद आगरा। अनुज गुप्ता 12 मई 2026 से अपने घर नयाबांस लोहा मंडी से लापता है। अनुज गुप्ता की उम्र लगभग 53 वर्ष है। कद 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला है। शरीर एकहरा और मजबूत है, चेहरा गोल है। अनुज के बाल खिचड़ी अधपके हैं और घटना के समय स्लेटी रंग की टी शर्ट और नीले रंग की पैंट पहने हुई थी। अनुज गुप्ता के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो थाना प्रभारी, थाना लोहा मंडी, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार आकांक्षा शर्मा, पुत्री अनिल शर्मा, निवासी बाग अंता, थाना लोहा मंडी, जनपद आगरा। आकांक्षा शर्मा दिनांक 14 मई 2026 से अपने घर से लापता है। आकांक्षा शर्मा की उम्र 18 वर्ष है। कद 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा है। शरीर एकहरा है, चेहरा गोल है। घटना के समय काले रंग का शलवार सूट पहना हुआ था। आकांक्षा शर्मा के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना

0: आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना लोहा मंडी, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार श्रीमती रजनी पत्नी श्री रामेश्वर निवासी ग्राम मितावली थाना एतमादपुर जनपद आगरा। श्रीमती रजनी दिनांक 24 मई 2026 की रात्रि में अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई है। रजनी की उम्र लगभग 23 वर्ष है। कद 5 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, आंख नाक कान औसत हैं। घटना के समय रजनी ने पीले रंग की साड़ी पहने हुई थी। रजनी के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना एतमादपुर जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की अपने रेडियो हमसफर विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आसपास, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 8 बजे ही हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
4: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
5: इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए।

0: हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
2: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी, जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा

0: मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन स्तर पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
3: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी। हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवीं वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,

0: India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counselling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदा खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत का परचम बरदार जहाज बोहेरा एमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी दोमाही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निमटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट यूजी काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के लिए नवा मकाम, जबकि सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मकाम हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। यमन के साहिल के नजदीक बोहरे अहमर में कल भारत का परचम बरदार तिजारती जहाज एमसीवी फैजे नूरे ओलिया हमले के बाद डूब गया है। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरा, जिनमें 13 भारतीय शहरी थे, उन सभी को बचा लिया गया है। तफसील हमारे नामनिकार से।
2: रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परचम बरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये डूब गया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि भारत दिफा से कासिर तिजारती जहाज पर इस इश्तियाल अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी को हमले का निशाना बनाना खत्म होना चाहिए और खित्ते की बैन अवी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी और तिजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि रियाज में वाक़ भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और अमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन के हुकाम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रहा है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद मकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर जबरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफाजी को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में ओहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के दोतरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती मीटिंग की मेजबानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदूबीन सकाफत से मुतालिक 4 रोजा तबादले ख्याल के लिए यहां पहुंच गए हैं। हमारे नामानिकार की एक रिपोर्ट।
3: यह 4 रोजा मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक़िद की जा रही है, जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वज़राए सकाफत की मीटिंग से शामिल हैं। इस तकरीब के लिए शहर की खासतौर पर तज़यीन कारी की गई।

0: है। वीआईपी रोड और भोज सेतु को ताजा रंगों और मुराल से सजाया गया है। इब्तदाई दो रोज के दौरान सीनियर अफसरान तबादले ख्याल करेंगे और बाद के दो दिन सकाफत के वजीरों की मीटिंग्स मुनक्किद होंगी। वज़रा एक मुश्तरका ऐलानिये को कतई शक्ल देंगे। भारत ने रुकन मुल्कों के सामने दो अहम तजावीज रखी हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक फनकारों और सकाफती वरसे के लिए एक मुश्तरका डिजिटल प्लेटफॉर्म तख्लीक देने से है और दूसरी तजवीज का ताल्लुक ब्रिक्स मुल्कों की तरफ से यूनेस्को की मुश्तरका नामजदगियों की हौसला अफजाई से है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
1: ब्रिक्स के वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग और ब्रिक्स के सीनियर अफसरान की 30वीं मीटिंग ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में आज से इस महीने की 7 तारीख तक मुनक्किद की जाएगी। वज़ारत तालीम ने बताया कि इन मीटिंग्स में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए तालीम, सीनियर अफसरान और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान इश्तराक के मौजूदात पर बातचीत की जाएगी, जिनमें बचपन के इब्तदाई दौर में देखभाल और तालीम, नीज हुनरबंदी को मुस्तहकम बनाने, तआवुन में इजाफा करने और इश्तराक पर मबनी तहकीक, इख्तिरा, नीज स्टार्टअप्स को फरोग देने जैसे तरजीही मैदान शामिल हैं। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ब्रिक्स के वज़राए तालीम की इस 13वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपनी माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान आज करेगा। इस माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान हर दो महीने में एक बार किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ताजा तरीन रेपो रेट के फैसले का ऐलान मुंबई में सुबह 10 बजे करेंगे। पॉलिसी से मुताल्लिक यह फैसला एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का सिलसिला जारी है और अमरीका के वफाकी बैंक की पॉलिसी में जारहियत का रुझान पाया जाता है। उम्मीद है कि आरबीआई अपनी रेपो रेट 5.25% में कोई तब्दीली न करे। इसका मतलब यह होगा कि माली पॉलिसी से मुताल्लिक 6 रुकनी कमेटी MPC अपना गैर जानबदाराना मौकिफ बरकरार रखे। रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आयद सूद की वो फीस होती है जो वो कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देते हुए वसूल करता है। रिजर्व बैंक अपने तबसरे में इफरात जर से मुताल्लिक उन अंदेशों, खाम कीमतों और आलमी जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी हालात का जिक्र करेगा जो भारतीय मईशत पर असरअंदाज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को हिदायत दी है कि वो फर्जी खातों और साइबर घोटालों वाले बैंक खातों से निपटने के लिए एक मयारी तरीकेकार तश्कील दे। अदालत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों, नीज कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को भी हिदायतें जारी की हैं कि वो शिकायतों के इजाले को मुस्तकम बनाएं, घोटालों से बचाए गए रुपए पैसे की बहाली में तेजी लाएं और डिजिटल घोटालों के केस से निपटने के अमल को बेहतर बनाएं। मेडिकल काउंसिल कमेटी NCC आज नीट UG काउंसिलिंग के पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी इस महीने की 12 तारीख को सुपहर 3 बजे तक की जा सकेगी। तफसील हमारे नामानिकार से।
2: उम्मीदवार 6 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान अपने मुतबादिल फराहम कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए 12 और 13 अगस्त को चॉइस लॉकिंग सहूलत दस्तियाब रहेगी। इस दौरान 13 से 16 अगस्त के दरमियान पहले राउंड की सीटों का अलॉटमेंट होगा। नतायज का ऐलान 17 अगस्त को होगा। सीट अलॉट किए गए उम्मीदवारों को 18 से 22 अगस्त के दरमियान मुतल्लिका इदारों में रिपोर्ट करना होगा। इस अमल में हिस्सा लेने वाले इदारे रिपोर्ट किए गए उम्मीदवारों के डेटा की 23 अगस्त को तस्दीक करेंगे। काउंसलिंग के अमल की शुरुआत से पहले वजारत सेहत ने मरहलावार ट्यूटोरियल वीडियोज जारी किए हैं ताकि उम्मीदवार MCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मुतबादिल फराहम करना और सीट अलॉटमेंट के तरीक़ेकार को समझ सकें। रिशु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के इम्तिहान में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा के मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। रांची में हजारों उम्मीदवार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिन से गैर मुयना मुद्दत का एहतजाज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
0: मुजाहिरीन ने दावा किया कि तेज धूप में भी मुजाहरे की जगह पर रहने के बावजूद उन्हें पीने के पानी, खुराक और बैतुलखला जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। दिफा के मरकजी वजीर ममलिकत और रांची के रुकने पार्लियामेंट संजय सेठ ने इस मामले पर अपोजिशन की खामोशी पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने इस मामले में मुकम्मल बेहिसी का मुजाहरा किया है और अब तक हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात नहीं की है। मुजाहरों के मुकाम पर बुनियादी सहूलतों की कमी पर इजहार ख्याल करते हुए गोड्डा के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन की क्यादत वाली हुकूमत को

0: आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए नवा मकाम, जबकि सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पांचवा मकाम हासिल किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गाने। कार्यक्रम है गीतांजलि और इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हमसफर विशेष कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

गीतांजलि कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत। फिल्म का नाम है आशिकी, गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का, गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू।

आशिकी फिल्म का गीत आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू का गाया हुआ। गीत लिखा था समीर ने, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। अब हम आपको अभिमान फिल्म का एक गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अभिमान फिल्म का गीत आपने सुना, इसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत, ये है

ये खूबसूरत संगीत है बप्पी लहरी का और इसके लिए गीत तैयार किया है अनजान ने। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, आवाजें हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: ये दो आवाजें थीं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था आज का अर्जुन। गीतांजलि कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जीना मरना तेरे संग फिल्म का ये सदाबहार गीत।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गाने। कार्यक्रम है गीतांजलि और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा। गीतांजलि कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जीना मरना तेरे संग से ये है।

ये संगीत है बाबुल बोस का, गीत लिखा है रविंद्र रावल ने, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये था जीना मरना तेरे संग फिल्म का गीत। गीत लिखा था रविंद्र रावल ने, धुन बनाई थी बाबुल बोस ने। कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत ये है।

इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है दो रास्ते।

लता मंगेशकर की आवाज में ये था दो रास्ते फिल्म का गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीतांजलि कार्यक्रम का अगला गीत डॉक्टर विद्या फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म डॉक्टर विद्या के इस सदाबहार गीत के साथ ही गीतांजलि कार्यक्रम समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:15 होने को ही अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए आगरा और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
3: विगत दिनों 2 दिवसीय दौरे पर आगरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के पहले दिन फतेहाबाद मार्ग स्थित टाटा मैदान पर 342 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी है। 292 करोड़ से अधिक की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और 50 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। 342 करोड़ की धनराशि सड़क एवं संपर्क मार्गों का विकास, जल निकासी और नाला निर्माण कार्य, नगर विकास से जुड़ी योजनाएं, स्वास्थ्य एवं जन सुविधा से संबंधित परियोजनाएं, शिक्षा एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के कार्य सहित जन से जुड़ी स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा अब विकास की नई पहचान बन रहा है। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने खंदारी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सेवाजी मंडपम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के 1.5 लाख से अधिक शिक्षक और उनके आश्रित परिजनों सहित 7.5 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए का कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इस दौरान शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के बीच MOU साइन किया गया है। आगरा में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय और डॉक्टर MPS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल द्वारा दीप जलाकर किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की होटल, इंश्योरेंस, व्हीकल सहित 1 दर्जन से अधिक नामी लिमिटेड कंपनियों द्वारा 1,500 से अधिक अभ्यर्थियों का पंजीकरण कर तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए 457 युवाओं को रोजगार दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि जितने भी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आए हैं उन्हें केवल मिलने वाले इस रोजगार से संतुष्ट नहीं होना है बल्कि इससे बेहतर अवसर के लिए भी प्रयास करना है। उन्होंने रोजगार मेले के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और सेवायोजन कार्यालय के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आगरा में विगत दिनों खेत बचाओ अभियान, सुपर एल नीनो और सूखे के प्रभाव के तहत बिचपुरी स्थित RBS कॉलेज के कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित किसानों के साथ संवाद और जनपद स्तरीय तिलहन मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री द्वारा ट्रैक्टर की चाबी, PF कुसुम योजना के तहत सोलर पंप, बिजली मिनी किट, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित तिल के बीजों और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण कर किसानों को लाभान्वित किया गया। बाद में सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर किसानों को बीज उर्वरक की उपलब्धता कराने के साथ साथ संवाद, प्राकृतिक खेती और किसान जागरूकता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और कहीं भी खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी वहाँ भी जल्द खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में मंत्री ने कहा,
4: चढ़ावा में जो चोरी के मामले आए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने SIT गठित किया और इस बात को साफ तौर पर कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और कोई भी कितना भी बड़ा होगा प्रभावशाली वो बख्शा नहीं जाएगा। उस संदर्भ में तुरंत SIT बनी और तत्काल 8 लोगों को के ऊपर जो जिम्मेदारियां आई, बरामद भी पैसा हुआ और उनको जेल भी भेजा गया।
3: विगत दिनों आगरा में वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम को सफल बनाने के लिए करीब 62 लाख वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा वृक्षारोपण कर किया गया। आगरा जनपद में 5,000 से अधिक स्थानों पर 61,80,000 से अधिक पौधे रोपे गए, जिनमें 21 लाख पौधे वन विभाग सहित करीब 41 लाख अन्य विभागों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा,
5: वृक्ष जो है वो सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए है, इसलिए इनका लगना जरूरी है, इनके प्रति चेतना जगाना भी जरूरी है। माँ के नाम एक

0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको भावनात्मक रूप से इसलिए जोड़ा कि सिर्फ रोपित ना करें उसको पोषित भी करें।
1: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा के सर्किट हाउस में मंडल के अधिकारियों के साथ संस्कृति धर्मार्थ कार एवं पर्यटन विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, पर्यटन स्थलों के विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है।
2: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
3: केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने बदायूं स्थित फोर लीव प्रकाशगंज

0: चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है।
1: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
2: केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं स्थित फोर लीव प्रकाशगंज उज्जैनी बदायूं लखनऊ को नई सीधी रेल सेवा का शुभारंभ बीते दिनों किया। बदायूं ऐशबाग लखनऊ विशेष गाड़ी संख्या 05018 को उज्जैनी रेलवे स्टेशन से दोपहर 12 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रेलगाड़ी बदायूं स्टेशन पर 12:15 पर पहुंचेगी और 12:17 पर यहां से रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली और मोहेबल्लापुर होते हुए 9:10 पर ऐशबाग लखनऊ पहुंचेगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया,
3: बदायूं से लखनऊ के लिए ट्रेन की स्वीकृति ले ली थी और मेरा सौभाग्य है उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला।
2: मरीजों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं परिसर में अमृत औषधि केंद्र का शुभारंभ बीते दिनों उप प्रधानाचार्य डॉक्टर नेहा सिंह की उपस्थिति में किया गया। अमृत औषधि केंद्र का संचालन HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री को आमजन तक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत दवाइयां एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री बाजार मूल्य की तुलना में 50-90% तक की छूट पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे मरीजों पर उपचार का आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है। मुख्य विकास अधिकारी बदायूं के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनपद की CM डैशबोर्ड पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जनपद स्तरीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैम व मैम बच्चों के सुधार और आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन मशीनों की उपलब्धता पर बाल विकास परियोजनाओं अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी केंद्रवार सैम व मैम बच्चों का कुपोषण प्रबंधन करते हुए पोर्टल पर सुधार की प्रगति करते हुए उनके समक्ष समस्त बाल विकास योजना अधिकारी अपनी अपनी सेक्टरवार और केंद्रवार आख्या प्रस्तुत करेंगे। उनके संबंध में साप्ताहिक बैठक आयोजित कराई जाए और विभाग CM डैशबोर्ड प्रत्येक केंद्र पर समस्त प्रकार की वजन मशीनों की उपलब्धता का विवरण लेकर बैठक में प्रतिभाग करें। साथ ही समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी निर्देश दिए गए। जनगणना 2027 के अंतर्गत जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के फील्ड कार्यों के सफल, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बीते दिनों आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन ने की। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कहा कि जनगणना 2027 राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और जिला जनगणना हस्त पुस्तिका का निर्माण उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी चार्ज अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा का पूर्ण अनुपालन करते हुए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करें तथा फील्ड कार्यों को पूरी पारदर्शिता, गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ संपादित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि DCHB फील्ड कार्य के दौरान प्रत्येक चार्ज अधिकारी प्रतिदिन प्रगति से जिला जनगणना अधिकारी को नियमित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कार्यों की सतत समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा भी पोर्टल आधारित दैनिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से जिला जनगणना अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण का संचालन लखनऊ से नामित जनगणना अधिकारी प्रदीप सिंह चौहान और मंडल प्रभारी जनगणना अभिषेक कनौजिया द्वारा किया गया। कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों के दृष्टिगत ADG बरेली जोन बरेली रमेश शर्मा व DIG बरेली जोन बरेली अजय कुमार साहनी ने जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के साथ संयुक्त रूप से बदायूं के कछला गंगा घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में सेक्टर व जोन बनाते हुए वह मजिस्ट्रेट अधिकारी नामित किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रकाश की बेहतर व्यवस्था की गई है और CCTV से निगरानी की जा रही है। शिविर के संचालन के लिए भी स्थापना पूर्ण अनुमति लेने सहित अन्य मापदंड बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा आपात स्थिति में त्वरित सहायता एवं प्रभावी समन्वय के लिए कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC तथा पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम से संपर्क करें।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का

0: Kanka.
1: आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी आगरा। इसे आप मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज के अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुनते हैं। 9:25 और 20 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बरसात से। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने, फिल्म का नाम था बरसात। मिर्जा साहिबान फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं। गीत के बोल लिखे हैं अजीज कश्मीरी ने, संगीतकार हैं पंडित अमरनाथ, हुस्नलाल भगतराम, आवाजें हैं जी एम दुर्रानी और नूर जहां की।

नूरजहां और जीएम दुर्रानी की आवाजों में आपने अजीज कश्मीरी का लिखा गीत सुना। इसकी धुन बनाई थी पंडित अमरनाथ हुस्नलाल भगतराम ने। फिल्म का नाम था मिर्जा साहिबान। रेशमी रुमाल फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। राजा मेहदी अली खां के बोल हैं, बाबुल का संगीत है, गायक कलाकार हैं तलत महमूद।

रेशमी रुमाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। गीतकार थे राजा मेहंदी अली खां, संगीतकार बाबुल। पाकिजा फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, बोल है कमाल अमरोही के, धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

लता मंगेशकर की आवाज में ये था पाकीज़ा फिल्म का गीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं खेमचंद प्रकाश की तर्ज पर खुर्शीद की आवाज में तानसेन फिल्म का ये नगमा।

खुर्शीद की आवाज में आपने सुना तानसेन फिल्म का गीत। इसके साथ ही गीत मंजूषा कार्यक्रम अब खत्म हुआ। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गीत पुरानी फिल्मों से। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं शिव कुमार पाराशर। आइए सुनते हैं शिव कुमार पाराशर के गाए ब्रज लोकगीत।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं शिव कुमार पाराशर के गाए ब्रज लोक गीत। आइए सुनते हैं एक और लोक रचना, कलाकार एक बार फिर शिव कुमार पाराशर।

शिव कुमार पाराशर के गाए ब्रज लोक गीत। लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 10:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सुरसरिता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सावन का और बरसात का मौसम है और हम सभी जानते हैं कि ये जो मौसम है और खासतौर से सावन का जो महीना है, इसका हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और अगर हम ब्रज की बात करें तो ब्रज में तो एक अलग ही अनूठा उत्सव है सावन का महीना। जब सोमवार आता है तो हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, या यूं कहें कि सावन का जो महीना है वो भगवान शिव के लिए समर्पित है। और फिर बरसात का या सावन का ये महीना प्रेम, सौंदर्य और नई उमंगों का एक प्रतीक भी माना जाता है। वर्षा की फुहारें, काले बादल, हरियाली और मिट्टी की सौंध ही खुशबू मन को रोमांचित कर देती है। और ये जो अनुभव है, ये जो अनुभूति है, इसी अनुभूति को गीतों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से ढाला गया है।

जी हाँ, बरसात की पहली फुहार जब तपती धरती को स्पर्श करती है तो मिट्टी की सौंधी सी सुगंध पूरे वातावरण में घुल जाती है। पेड़ों की हरियाली जैसे नया श्रृंगार कर लेती है, नदियां मुस्कुराने लगती हैं और मन अनायास ही किसी की मधुर यादों में गुनगुनाने लगता है। शायद यही वजह है कि ये जो फिल्म संगीत है, फिल्मी गाने हैं, ये सावन और बरसात का एक मौसम को लेकर प्रेम, मिलन, यादें और भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे खूबसूरत माध्यम है।

सावन की झड़ियां। जी हां, बरसात के मौसम में, सावन के महीने में, जब रिमझिम फुहारें बरसती हैं, तो रिमझिम गिरे सावन जैसे मधुर गीत बरबस ही होठों पर आ जाते हैं। और इन गीतों में बरसात की कोमलता है तो एक और प्रेम की सादगी भी है। एक गीत है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। इसे सुनकर तो मन कहीं यादों की गलियों में भटकने लगता है, और जब सावन की झड़ी लगती है तो मन के भीतर भी यादों की बूंदें बरसने लगती हैं।

0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के बाद।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: सावन की फुहारें, ये जब मन की धरती पर गिरती हैं तो हमें ये भी संदेश देती हैं कि जीवन में ताजगी बनाए रखने के लिए कभी कभी यादों की बरसात भी जरूरी होती है। पुराने गीतों की मिठास हमें उन सुनहरे पलों में ले जाती है जहां हमारे जज्बात, हमारी भावनाएं सच्ची थीं और धुनें दिल से निकलती थीं और शब्द हमारे मन को छू जाते हैं, स्पर्श कर जाते हैं कुछ इस तरह।

रिमझिम के ये सुहाने गीत सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानवीय भावनाओं का एक अद्भुत संगम है। ये बरसात, खासतौर से सावन की बरसात, प्रेमियों के मिलन का उत्सव है। ये बिछड़े हुए प्रेमियों की यादें और गहरा कर देती है, इसीलिए ये गीत केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि प्रेमियों को मिलाने का भी काम करते हैं।

सावन का महीना या बरसात का मौसम केवल भीगने के लिए नहीं, या फिर केवल सजन से मिलने के लिए नहीं, बल्कि ये तो टिप टिप बरसा पानी हो या भीगी भीगी रातों में, हर गीत अपने अंदाज में प्रेम के रंगों को और भी गहरा कर देता है। सावन के महीने का एक अपना अलग अंदाज है, अनेक सुर हैं और हर सुर में जीवन की कोई ना कोई याद छुपी हुई है।

सावन के इस महीने में बरसात की हर बूंद का आनंद लीजिए, अपने प्रियजनों के साथ मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और बरसात के इस अनमोल उपहार को अपने दिल से महसूस कीजिए। और इसी के साथ सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं बुद्ध देवदास गुप्ता का सरोद पर बजाया राग कुकुभ बिलावल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बुद्ध देवदास गुप्ता का राग कुकुब बिलावल में सरोद वादन। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं शाहिद परवेज का राग देशकार में सितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे शाहिद परवेज का रागदेशकार में सितार वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर बॉलीवुड में सबसे नेचुरल और बिंदास एक्ट्रेस की बात हो तो सबसे पहले ख्याल आता है काजोल का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की, जिसने अपनी शानदार अदाकारी, बेहतरीन मुस्कान और सहज व्यक्तित्व से करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई है। और ये कार्यक्रम समर्पित है बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री काजोल को। आइए जानते हैं उनके जीवन, फिल्मी सफर और उपलब्धियों के बारे में, साथ ही सुनेंगे उनकी कुछ यादगार फिल्मों के शानदार गीत।

दोस्तों, काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ। अभिनय उन्हें विरासत में मिला। उनकी मां तनुजा अपने समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, जबकि उनके पिता शोमू मुखर्जी फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उनकी नानी शोभना समर्थ भी हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में काजोल ने फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत भले ही साधारण रही, लेकिन अगले ही साल बाजीगर ने उनकी किस्मत बदल दी। इसके बाद उन्होंने ये दिल लगी, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गुप्त, इश्क, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फना, यू मी और हम जैसी फिल्मों में काम किया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में निभाया उनका किरदार सिमरन, आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाए।

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: अब बात करते हैं काजोल की सबसे बड़ी खासियत की। काजोल ने कभी परफेक्ट दिखने या ग्लैमर का दिखावा करने की कोशिश नहीं की। उनकी असली ताकत रही उनकी मुस्कान, उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस।

और उनका बेबाक चुलबुला अंदाज। और अगर बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक ऑन स्क्रीन जोड़ियों की बात हो तो शाहरुख खान और काजोल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बाजीगर करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान और दिलवाले जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। आज भी इस जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे सफल रोमांटिक जोड़ियों में गिना जाता है।

0: दोस्तों, काजोल की ऑन स्क्रीन जोड़ी तो शाहरुख खान के साथ हिट हुई, लेकिन रियल लाइफ में काजोल का दिल आया अभिनेता अजय देवगन पर। दोनों की मुलाकात फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी। कुछ साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 24 फरवरी 1999 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आज उनके दो बच्चे हैं, न्यासा और युग। शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के बाद भी काजोल ने अपने अभिनय का सफर जारी रखा और हर दौर में अपनी अलग पहचान बनाए रखी।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

दोस्तों, अगर अवार्ड्स की बात करें तो काजोल ने अपने अब तक के करियर में 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते हैं और वे सबसे ज़्यादा फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हैं। साल 2011 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा में उनके योगदान का बड़ा सम्मान है।

दोस्तों काजोल सामाजिक कामों से भी जुड़ी हुई हैं। वे एक एनजीओ शिक्षा की सदस्य हैं, जो बच्चों की शिक्षा पर काम करता है। इसके अलावा वह लोम्बा ट्रस्ट की इंटरनेशनल गुडविल एम्बेसडर हैं। ये ट्रस्ट विधवाओं और उनके बच्चों की सहायता करता है। काजोल प्रथम जो एक समाजसेवी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है, उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आप समय है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। पहला है सोशल मीडिया के प्रयोग में सावधानियां और दूसरा आइए बने जल मित्र। आजकल शायद ही कोई ऐसा होगा जो मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करता हो। सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को खोल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पानी, जिसके बिना हमारी एक दिन की जिंदगी भी नहीं चल सकती। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है इन दोनों चीजों का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है? तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। बीच बीच में सुनेंगे आपके पसंदीदा गीत और साथ ही कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें करेंगे जो शायद आपके बहुत काम आए। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। अब किसी से बात करनी हो, फोटो भेजनी हो, कोई जानकारी ढूंढनी हो या फिर अपना छोटा सा बिजनेस बढ़ाना हो, सब कुछ बस एक क्लिक पर हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया जितना सुविधाजनक है, इसे यूज़ करने में उतनी ही सावधानी भी ज़रूरी है। कई बार हम बिना सोचे समझे अपनी निजी बातें सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जैसे घर का पता, फोन नंबर, बच्चों की जानकारी या फिर कहीं घूमने गए हैं तो तुरंत लोकेशन शेयर कर दी। हमें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार यही छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया पर उतनी ही जानकारी साझा करें जितनी सच में ज़रूरी हो। अपने अकाउंट का पासवर्ड हमेशा मजबूत रखें और किसी के साथ OTP या पासवर्ड कभी शेयर ना करें। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है।

दोस्तों, एक बात आपने भी कभी ना कभी जरूर नोटिस की होगी, हमें मैसेज आता है और उसके नीचे लिखा होता है इसको तुरंत भेजिए, और हम बिना सोचे समझे उसे आगे भेज देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वह खबर झूठी निकली तो? आजकल फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलती है, कई बार पुरानी तस्वीरों को नई घटना बताकर शेयर कर दिया जाता है, तो कभी किसी अफवाह को सच की तरह पेश किया जाता है। इससे लोगों में डर, भ्रम और बेवजह की परेशानी फैल सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई ऐसी खबर मिले तो बहुत चौंकाने वाली लगे तो उसे तुरंत आगे भेजने की बजाय पहले उसकी सच्चाई जरूर पता कर लें। जिम्मेदार सोशल मीडिया यूजर वही है जो सही जानकारी ही दूसरों तक पहुंचाए।

दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो बस 5 मिनट मोबाइल देखता हूँ और फिर आपको पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कहाँ चला गया? ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन अगर यही आदत रोज की बन जाए तो इसका असर हमारी सेहत, नींद, पढ़ाई, काम और परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय पर पड़ने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन में कुछ समय मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। घर वालों के साथ बैठिए, बच्चों से बातें कीजिए, थोड़ा टहल लीजिए या फिर कोई किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि असली खुशी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं अपने आसपास के लोगों के साथ बिताए गए समय में भी होती है।

चलिए अब बात करते हैं पानी की। दोस्तों, अगर एक दिन हमारे घर में पानी ना आए तो सबसे पहले क्या होगा? खाना बनाना मुश्किल, नहाना मुश्किल, सफाई मुश्किल, यानी पूरा दिन ही रुक सा जाएगा। यही बताता है कि पानी हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। फिर भी कई बार हम बिना सोचे समझे पानी बहने देते हैं। ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हैं, गाड़ी धोने में पाइप से बहुत सारा पानी बहा देते हैं, या फिर टपकते हुए नल को कई दिनों तक ठीक नहीं करवाते। अगर हम सिर्फ इन छोटी छोटी आदतों को बदल लें तो हर दिन बहुत सारा पानी बचाया जा सकता है।

0: बारिश का मौसम तो दोस्तों हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बारिश का इतना सारा पानी आखिर जाता कहाँ है? ये सारा का सारा पानी यूं ही बह जाता है। अब अगर हम इस पानी को सहेजना सीख जाएं, तो गर्मियों में पानी की कमी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। यही काम करता है वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें आप घर की छत पर, अहाते में, पहाड़ी की ढाल पर या कृत्रिम भूमि पर बने कृत्रिम तलों आदि में जल संचयन कर सकते हैं, मतलब बारिश का पानी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पौधों को सुबह या शाम पानी दें ताकि कम पानी में भी काम हो जाए। घर में बच्चों को भी पानी बचाने की आदत सिखाएं। अच्छी आदतें बचपन से शुरू हो तो पूरी जिंदगी साथ रहती हैं।
1: Thank you.

तो दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का सार बस इतना सा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन समझदारी के साथ, और पानी का इस्तेमाल ज़रूरत के अनुसार करें क्योंकि इसकी हर बूंद कीमती है। आइए आज से हम सब मिलकर छोटा सा संकल्प लें, न फेक न्यूज़ फैलाएंगे न पानी की बर्बादी करेंगे, खुद भी जागरूक बनेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जिम्मेदार नागरिक बने, अब आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य को। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 12 बजने को है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
2: जी
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सब

0: प्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया। कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
1: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: और राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
1: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
0: हाँ, विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
1: बिल्कुल सही कहा जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
0: जी, बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देखकर ही उठते हैं।
1: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
0: जी, वो तो है,
1: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है।
1: जी,
0: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
1: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है। विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है। मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए अजीत जी क्या होगा।
0: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
1: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे। पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
0: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
1: देखते देखते एक घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
0: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
1: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
0: और नोटिफिकेशन भी बंद।
1: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा।
0: क्या बोलेगा?
1: मुझे भी देख लो।
0: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
1: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
0: वो कैसे?
1: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहाँ आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
0: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
1: जी,
0: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
1: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
0: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
1: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
0: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
0: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
1: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
1: नई जानकारी के साथ।
0: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IVRS नंबर यानी 8800044055 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic

0: in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
5: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
4: शर्त ये है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
5: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं।

0: अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
1: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
2: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
3: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
1: छीन लो छीन लो।
0: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
4: आज खेल में बड़ा मजा,
5: बहुत मजा आ गया। क्या गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
6: हाँ, पर गोल हो गया। किसी का
0: दिल खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
7: अरे कहाँ फंस गई?
8: ए, इधर क्या देख रहे हो?
7: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
9: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
10: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
7: लेकिन
9: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
0: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
11: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
7: हाँ ठीक है,
11: कोशिश करते हैं।
7: हाँ,
11: निकल गया।
0: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
7: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
11: जी बाबा।
7: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
11: तो क्या इनाम देते हो?
7: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
0: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे, पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
12: पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला।
13: तुम्हें क्या लगता है?
12: महाराज आ रहा है।
13: अरे अरे, सुजान सिंह जी भी आ गए।
0: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
7: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयो, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
14: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत, बहुत, बहुत।
7: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में

0: कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
1: सही बात है।
0: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
2: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
1: अच्छा इंसान हमेशा सही काम करेगा।
2: बिल्कुल। देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
3: बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
4: महाराज की
5: जय हो।
4: महाराज की
5: जय हो।
4: महाराज की
5: जय हो।
4: महाराज की
5: जय हो।
2: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
7: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
8: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

0: जाता मैं हूँ काला कौवा, मैं हूँ काला कौवा।
1: एक दिन कौवे को भूख लगी, वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
0: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़ कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
1: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
0: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले

सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा।

0: कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते, हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है, वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं, तुम हमारी चिंता न करो।
0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ, हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो, साहस और एकता से बड़ी से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
2: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
0: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
1: चूहे भाई, चूहे भाई,

0: कौए भाई उनके पास चले, मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
1: चलो
0: चलो चलो कौए भाई, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो।
2: चूहा और कौआ जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
3: चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो, शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
0: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
3: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया, फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म टैक्सी नंबर 9211 से सुनिधि चौहान और केके की आवाजों में। विशाल डडलानी की रचना को संगीत से सवारा था विशाल शेखर ने। अगला गीत है फिल्म गजनी से, जावेद अली की आवाज है, प्रसून जोशी के बोल है, ए आर रहमान की धुन।

सोनू निगम को आपने सुना फिल्म दिल तो बच्चा है जी में। कुमार की शब्द रचना थी, प्रीतम की संगीत रचना। अगला गीत हमने लिया है फिल्म दो लफ्जों की कहानी से। आवाज अल्तमश फरीदी की है, बबली हक की धुन पर बोल है संदीप नाथ के।

ग्लेन जॉन की आवाज में ये गीत था फिल्म वो लम्हे से। सईद कादरी के बोल थे, प्रीतम की धुन। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म ये साली जिंदगी से। जावेद अली की आवाज है, गीत स्वानंद किरकिरे का है, संगीत निशांत खान का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के एक बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर

0: होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said the lives of people of Jammu and Kashmir and Ladakh have witnessed wide-ranging transformation since the abrogation of Articles 370 and 35A 7 years ago. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the infrastructure has expanded, opportunities in areas such as education, healthcare, entrepreneurship and sports have grown in both the Union territories. He said that the women, the marginalized communities or those who were denied the basic constitutional rights for decades have been empowered with the full application of the Constitution. The Prime Minister highlighted that the day assumes even greater importance as the country is celebrating the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee this year. He said that his lifelong commitment to national unity continues to inspire generations. Mr. Modi said that Dr. Mukherjee's vision found historic fulfillment on 5th August 2019. He reaffirmed the government's commitment to the progress of Jammu and Kashmir as well as Ladakh and to ensure that every citizen has the opportunity to dream big, achieve and contribute to the making of a Viksit Bharat. The Reserve Bank of India RBI Governor Sanjay Malhotra has said that country's economic growth continues to be supported by resilient demand and it remains the world's fastest growing large economy. He said country's economy has performed better than expected in April-June quarter of this fiscal. Announcing the Monetary Policy Committee's decision today, Mr. Malhotra said RBI's

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश कानून साज असम्बली के मानसून इजलास के तीसरे दिन अपोजिशन जमातों ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे के गबन पर बहस का मुतालबा करते हुए असम्बली में हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्रवाई 1 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इस दरमियान आज कानून साज काउंसिल में वक्फा सवालात के दौरान SP रुकन मान सिंह ने जंग से मुतासर ममालिक में काम करने वाले रियासती मजदूरों पर सवाल उठाया। इसका जवाब देते हुए रियासती वजीर मेहनत अनिल राजभर ने कहा कि रियासती हुकूमत के पास तमाम मजदूरों के बारे में मुकम्मल मालूमात हैं और वजारत खारजा के जरिए हुकूमत सिफारत खाने के साथ रबते में है और मजदूरों को हर तरह की मदद फराहम की जा रही है। कोई भी मजदूर किसी मुल्क में फंसा हुआ नहीं है। इससे कबल रियासती वजीर खजाना सुरेश कुमार खन्ना ने मानसून इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन अराकीन के हंगामे के दरमियान कल असम्बली में माली साल 2026-27 के लिए 59,19,54,00,000 रुपए का जिमनी बजट पेश किया। इस बजट में मरकजी हुकूमत की जानिब से 11,240,97,00,000 रुपए का तावन शामिल है।
1: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399,50,00,000 रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620,04,00,000 रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107,88,00,000 रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए

0: 17,942 करोड़ 73 लाख रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022 करोड़ 27 लाख रुपए और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: हुकूमत ने रियासत में 60 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को रोडवेज बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने के लिए एक फैसला कुन कदम उठाया है। माली साल 2026-27 के पहले ज़िमनी बजट में इस इंतज़ाम के लिए स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को मुआवजा अदा करने के लिए 100 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ साथ ख़वातीन की बहबूद के महकमे के लिए 1,094,40,00,000 रुपए के इजाफी फंड की फराहमी से बेसहारा ख़वातीन की पेंशन स्कीम, चीफ मिनिस्टर्स चाइल्ड सर्विस स्कीम और ख़वातीन और बच्चों के तहफ़ से मुतालिक मुख्तलिफ स्कीमों को भी तकवीत मिली है। पार्लियामेंट ने कल पैदाइश और मौत के इंदराज तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने कल इसे मंजूर किया जबकि लोकसभा पहले ही इस बिल को पास कर चुकी है। इस बिल का मकसद पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में तरमीम करना है। इस बिल का मकसद पैदाइश और मौत के इंदराज में ताखीर को रोकना और बरवक्त रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई करना है। नए प्रोविजन के तहत अगर पैदाइश या मौत की इत्तला 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर दी जाती है तो उसका इंदराज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के इख्तियार करदा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेने के बाद ही किया जाएगा। इजाज़त देने से पहले अफसर को इस बात की तस्दीक करनी होगी कि उस शख्स की तरफ से फराहम करदा मालूमात दुरुस्त हैं। अगर 2 साल से ज़्यादा के बाद पैदाइश या मौत की इत्तला दी जाती है तो उसका इंदराज सिर्फ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर ही किया जाएगा। डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की 50वीं सालगिरह के मौके पर डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट मुश्तरका तौर पर रियासत के तमाम 75 अजला में एक रोज़ा ज़िला सतह के डेयरी कन्क्लेव 2026 का अहतमाम करेंगी। तकरीब में माहिरीन मुख्तलिफ मौजूआत पर तकनीकी और अमली मालूमात फराहम करेंगे। सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक रोज़ा दौरे पर कल वाराणसी पहुँचे। जनाब शेखावत ने यूनेस्को के जरिए सारनाथ को आलमी सकाफती विरासत में शामिल किए जाने के बाद सारनाथ में मजहबी स्तूप समेत आसार कदीमा के खंडरात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। मरकजी वजीर ने कहा कि आलमी सकाफती विरसे का दर्जा मिलने के बाद हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों और बौद्ध मत के अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा होने का इम्कान है। रियासत के कई अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। समय है हमारी बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार का।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही हमारी सभी बहनों को वंदना तुली का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, सावन का महीना चल रहा है। ये मौसम अपने आप में बहुत ही खुशनुमा होता है। रिमझिम बरसती फुहारें, मिट्टी की भीनी भीनी सौंधी खुशबू, पेड़ों की लहराती डालियां और चारों ओर बिखरी हरियाली। हाँ भाई, यही तो है सावन की पहचान। ये मौसम प्रकृति के सबसे सुंदर उपहारों में से एक है, जो तन को शीतलता और मन को आनंद से भर देता है। लेकिन इस खुशनुमा मौसम में थोड़ी सी सावधानी भी उतनी ही जरूरी है, ताकि बारिश का मजा किसी बीमारी या दुर्घटना की वजह से फीका न पड़ जाए। बारिश के मौसम में सबसे पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हमेशा उबला या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं। बाहर का खुला और बासी भोजन खाने से बचें, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं। बारिश में भीग जाने पर जल्द से जल्द सूखे

कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि गीले जूते मोजे अधिक देर तक पहनने से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। बहनों, अक्सर ये होता है कि हम घर के बाहर होते हैं और अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है, तो उस समय में ध्यान रखें कि बिजली कड़कने के समय खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े ना हों। और यदि बहुत तेज बारिश हो रही है तो किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाना ही बेहतर है। और बहनों, इन दिनों तो बरसाती कीड़े भी बहुत निकलते हैं, इनसे बचने के लिए घर में नमक, फिनाइल का पोछा लगाते रहें। और इन दिनों बच्चों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल करें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर तो कम होती ही है, इसलिए उन्हें घर का बना संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। बहनों, बरसात का आनंद तभी है जब हम खुद भी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम इस मौसम का भरपूर आनंद ले सकते हैं। बहनों, सावन की रिमझिम फुहारों का जिक्र हो और संगीत साथ ना हो, ऐसा भले कैसे हो सकता है? तो देर किस बात की, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत रिमझिम गीत।

0: बहनों, अब समय हो चला है आपको कहानी सुनवाने का, तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं नम्रता सिंघल की कहानी, जिसका शीर्षक है गौरी।
1: एक छोटा सा गांव था। वहां चारों तरफ धूमधाम और खुशी का माहौल था। गौरी और ओम की शादी हो रही थी। गौरी की उम्र 8 साल और ओम 10 साल का था। जिन्हें शादी का मतलब नहीं पता, उनका गांव की परंपरा के अनुसार बाल विवाह हो रहा था।

विवाह के पश्चात गौरी ससुराल आ गई। उसे खेलने कूदने लड़ने झगड़ने के लिए एक साथी मिल गया। दोनों दिन भर इसी तरह पूरा दिन काट देते। कुछ समय इसी तरह बीत गया। एक दिन दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी ओम को एक जहरीले सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यहीं से गौरी का जीवन बदल गया और उस पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वाले ओम की मृत्यु का कारण गौरी को ठहराने लगे, बात बात पर ताने देते, मारते पीटते, खाना नहीं देते, बुरा भला कहते और घर का सारा काम करवाते। बेचारी गौरी, जिसको किसी बात की समझ नहीं थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उसके परिवार का व्यवहार

जीवन बदल गया और उस पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वाले ओम की मृत्यु का कारण गौरी को ठहराने लगे, बात बात पर ताने देते, मारते पीटते, खाना नहीं देते, बुरा भला कहते और घर का सारा काम करवाते। बेचारी गौरी, जिसको किसी बात की समझ नहीं थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उसके परिवार का व्यवहार इतना बदल क्यों गया। एक तो वह अपने साथी के खो जाने से वैसे ही अकेलापन महसूस कर रही थी और ऊपर से घर वाले परेशान कर रहे थे। बेचारी पूरा दिन रो रो के सब काम करती। गौरी के माँ बाप को जब यह पता चला तो वह उसे वहां से ले आए। घर में उसका एक बड़ा भाई श्याम भी था, जिसे गौरी का लौटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु गौरी अपने माँ बाप को पाकर बहुत खुश थी। लेकिन जब वह अपने माता पिता को रोते देखती तो उसे यह समझ नहीं आता कि यह रो क्यों रहे हैं। वे अपनी बेटी के दुख से दुखी थे, लेकिन मासूम गौरी को यह तक नहीं पता था कि वह विधवा भी हो चुकी है। वह बहुत मेहनती और होशियार थी, अपने माता पिता को खुश रखने का पूरा प्रयास करती। इसी तरह समय कटता रहा। अब गौरी छोटी सी बच्ची से एक सुंदर युवती बन गई। उसका स्वभाव बहुत कोमल था। वह बहुत मेहनती थी, घर का काम, खेती बाड़ी का काम वह सब अकेले कर लेती, लेकिन उसका भाई उतना ही कामचोर था। जब उसके माता पिता गौरी की तारीफ करते तो वह चिढ़ जाता और उल्टा सीधा कहता और घर में झगड़ा करता। उसके व्यवहार से सभी दुखी रहते। उसकी पत्नी भी गौरी को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ती और उसके विधवा हो जाने पर, माँ बाप के घर रहने पर ऐसे ऐसे ताने देती कि गौरी का दिल छलनी हो जाता। अब वह बड़ी हो गई थी, उसे सब कुछ समझ में आने लगा था। वह दिन भर रोती रहती, कुछ ना कर पाती। इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर उसके पिता ने घर का बंटवारा कर दिया और स्वयं गौरी के साथ रहने लगे। यह बात भी श्याम को खल गई। उसने अपने पिता से कहा कि तुमने गौरी को अपना समझा और मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। अब मेरी भी आपकी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है। गौरी ही आपकी बेटी है तो वह ही आपका सब कुछ कर लेगी। श्याम के इस तरह के व्यवहार से और गौरी की चिंता ने उसके पिता को बीमार कर दिया। गौरी ने पूरी सेवा की, उधार लिया, इलाज करवाया, लेकिन सब बेकार। वह श्याम के पास भी गई, उसे पिता की अवस्था के बारे में बताया, लेकिन श्याम ने उसे जली कटी सुनाकर बेइज्जत किया। वह अपमानित होकर वहां से लौट आई। यह सब देखकर गौरी के पिता ने अपने मित्र जो गांव के सरपंच थे उन्हें बुलाकर कहा, मेरे जीवन का कुछ पता नहीं है, मेरे बाद इसके पिता आप ही हैं, क्योंकि श्याम से तो कोई उम्मीद है नहीं। मेरे बाद इसकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। यह कहकर वह एकदम शांत हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी श्याम उन्हें देखने नहीं आया। उसने पिता का दाह संस्कार भी नहीं किया। गौरी ने ही अपने पिता का दाह संस्कार व अन्य क्रियाकर्म किए। अब गौरी के ऊपर अपनी माँ को संभालने की जिम्मेदारी थी। वह उनका पूरा ख्याल रखती, घर का सारा काम करके खेतों में काम करने निकल जाती। लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात माँ एकदम गुमसुम सी हो गई थी। श्याम का गौरी के प्रति कटु व्यवहार, गौरी का वैधव्य और उसके भविष्य की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। पति का साया भी उठ चुका था। यह सब सोच सोच कर वह भी बीमार रहने लगी। उसका शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। गौरी के सामने समस्या यह थी कि वह घर से बाहर कमाने जाए या माँ की सेवा करे। फिर भी वह दोनों तरफ कुशलता से संभाल रही थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ ज्यादा बीमार हो गई, उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और कुछ दिनों में उनकी भी मृत्यु हो गई। अब गौरी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके मददगार सिर्फ सरपंच साहिब ही थे। गौरी ने उनसे उधार लेकर माँ का भी दाह संस्कार किया। इस प्रकार उस पर काफी कर्जा हो गया, जिसे चुकाना ही अब उसका उद्देश्य बन गया था। वह दिन रात मेहनत करती और धीरे धीरे अपना कर्जा चुका रही थी। तभी एक दिन सरपंच जी ने गौरी से कहा कि तुम्हारे पिता मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप गए हैं। मैं चाहता हूँ
कि तुम पुनर्वि

0: वह कर लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन गौरी ने मना कर दिया कि वह पहले अपना पूरा कर्जा चुकाएगी, फिर तय करेगी कि उसे क्या करना है। और यह भी कहा कि अगर मेरी किस्मत में शादी का सुख ही होता तो मैं विधवा ही क्यों होती। अब मेरा पुनर्विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। सरपंच जी चुप हो गए। धीरे धीरे करके कड़ी मेहनत से उसने कुछ सालों में अपना पूरा कर्जा चुका दिया। उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते और उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन गौरी तैयार नहीं होती। एक दिन फिर सरपंच जी ने कहा, बेटी तुम मेरी बात से इनकार ना करो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। गौरी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, आपको मुझसे कुछ कहने में संकोच कैसा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तब उन्होंने उसके सामने अपने पुत्र से शादी करने का प्रस्ताव रखा और यह भी बताया कि उनका पुत्र भी उसको पसंद करता है और शादी करना चाहता है। यह सुनकर वह अवाक रह गई, क्योंकि वह एक गरीब लड़की थी और वह उच्च कुल के, इसके अलावा वह बाल विधवा भी थी, जिसे कुछ लोग कुलच्छनी भी कहते थे। तब गौरी ने यह बात सरपंच से कही तो उन्होंने कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मैं तो गांव की बाल विवाह की परंपरा का भी विरोधी हूँ, और यदि तुम बाल विधवा हो तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है, मैं तो बस तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूँ। अब गौरी के पास इनकार करने का कोई मतलब ही नहीं था। उसके हाँ करने पर उसका विवाह सरपंच जी के पुत्र से हो गया और उसके कष्टों भरे जीवन में फिर से बहार आ गई।
1: मैंने अभी आपने सुनी नम्रता सिंघल से कहानी, जिसका शीर्षक था गौरी। मैंने जुड़ी रहेगा हमारे साथ, फिलहाल लेते एक छोटा सा अंतराल।

वेलकम बैक बहनों, आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार। बहनों, हमारे देश की मिट्टी की बात ही अजब और निराली है। इस मिट्टी ने केवल वीरों और विद्वानों को ही नहीं बल्कि ऐसी कलाओं को भी जन्म दिया जो पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन गई। जी बहनों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नवाबी नगरी लखनऊ की धरती से निकली चिकनकारी की। ये लखनऊ की एक अनमोल विरासत है। सुई और धागे से बुनी ये कला हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, कारीगरों की मेहनत और भारतीय हस्तशिल्प की गरिमा का जीवंत प्रतीक है। आइए जानते हैं लखनऊ की चिकनकारी की इस खूबसूरत विरासत के बारे में। बहनों, चिकनकारी का इतिहास मुगल काल से जुड़ा माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इसे मुगल महारानी नूरजहां का संरक्षण मिला और धीरे धीरे ये कला लखनऊ की शान बन गई। आज चिकनकारी को उसकी विशेष पहचान के लिए GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा भी प्राप्त है। चिकनकारी की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी बेहद महीन और हाथ से की जाने वाली कढ़ाई। बहनों, इसमें पहले सफेद कपड़े पर सफेद धागे से काम होता है, लेकिन अब ये कला कॉटन, मलमल, जॉर्जेट, सिल्क, ऑर्गेन्जा और कई रंग बिरंगे कपड़ों पर भी देखने को मिल रही है। इसमें फूल पत्तियों, बेलों और जालीदार डिजाइनों को बेहद नफासत से उकेरा जाता है। इस कला में अनेक प्रकार के टांके प्रयोग किए जाते हैं जिनमें बखिया, फंदा, जाली और टेपची विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मैनो, चिकनकारी सिर्फ एक हस्तकला नहीं बल्कि हजारों कारीगरों विशेषकर महिलाओं की आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। उनके धैर्य, मेहनत और हुनर से तैयार हर परिधान अपने आप में एक अनमोल कलाकृति होता है। तो बहनों, अगली बार जब आप चिकनकारी का कोई भी कुर्ता, साड़ी, दुपट्टा या अन्य परिधान देखें तो याद रखिए कि उसमें केवल धागों की कढ़ाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला, संस्कृति और कारीगरों की मेहनत भी बुनी हुई है। आइए इस अमूल्य भारतीय हस्तकला को अपनाएं, स्थानीय कारीगरों का सम्मान करें।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों, आज के दौर में दुनिया हमारी मुट्ठी में है, बस एक क्लिक और हम हजारों लोगों से जुड़ जाते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या हम सचमुच लोगों से जुड़ रहे हैं या केवल स्क्रीन से? सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखना, हर पल की तस्वीर पोस्ट करना और फिर बार बार ये देखना कि कितने लोगों ने उसे पसंद किया, ये आदत धीरे धीरे हमारी मेंटल पीस छीन रही है। सोचिए, क्या सचमुच हमारी पहचान कुछ हजार फॉलोवर्स से तय होती है? क्या किसी पोस्ट पर कम लाइक्स आने से हमारी योग्यता या पर्सनैलिटी कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। माना कि सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है सीखने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का और लोगों से जुड़ने का, लेकिन जब ये माध्यम हमारी खुशियों का मालिक बन जाए तब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि परेशानी भी तब शुरू होती है जब हम अपनी खुशी, आत्मविश्वास और पहचान को लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोवर्स की संख्या से जोड़ देते हैं। बहनों, कई बार हम दूसरों की चमक देखकर अपनी लाइफ को कमतर समझने लगते हैं और यही तुलना धीरे धीरे तनाव, चिंता और अकेलेपन का कारण बन जाती है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली दुनिया अक्सर सजाई हुई होती है, वहां सफलता तो दिखती है लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं, मुस्कान दिखती है लेकिन संघर्ष नहीं। याद रखिए, जो लोग वास्तव में आपके अपने हैं वे आपके साथ तब भी खड़े रहते हैं जब आपके पास एक भी फॉलोवर ना हो। इसलिए अपनी पहचान डिजिटल दुनिया से नहीं बल्कि अपने अच्छे व्यवहार, ईमानदारी, मेहनत और संस्कारों से बनाइए। आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें। सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे लेकिन उसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। हर दिन कुछ समय परिवार के साथ बिताएं, किताबें पढ़ें, प्रकृति के बीच टहलें और आमने सामने बैठकर दिल की बातें करें, क्योंकि असली रिश्ते स्क्रीन पर नहीं दिलों में बनते हैं। तो इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं खूबसूरत गीत।

0: मैनू बरसात का मौसम कटिंग से नए पौधे तैयार करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय नमी अधिक होती है और तापमान भी अनुकूल रहता है, जिससे पौधों की कटिंग जल्दी जड़ पकड़ लेती है। इस मौसम में आप गुलाब, गुड़हल, चमेली, बोगनवेलिया, मनी प्लांट जैसे पौधों की 6 से 8 इंच लंबी स्वस्थ कटिंग लेकर नए पौधे तैयार कर सकती हैं। और मैनू कटिंग लगाते समय नीचे की पत्तियां हटा दें और उसे हल्की भुरभुरी मिट्टी के मिश्रण में लगाएं, और गमले को ऐसी जगह रखें जहां तेज धूप ना हो लेकिन पर्याप्त रोशनी मिले, और मिट्टी में नमी बनाए रखें पर ध्यान रखें कि पानी जमा ना होने दें। तो देखिएगा, आप कुछ ही सप्ताह में नई जड़ें और कोमल पत्तियां निकलने लगेंगी। तो बहनों, इस वर्षा ऋतु अपने घर की हरियाली बढ़ाइए, पौधे तैयार कर अपने प्रियजनों को उपहार में दीजिए और पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दीजिए। मैनू, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में हमने बात की एक स्कूल की शिक्षिका शिपुल गुलाटी से, आइए सुनते हैं। बहनों, आज हमारे साथ हैं सेंट पॉल स्कूल की शिक्षिका श्रीमती शिपुल गुलाटी जी। शिपुल जी, कैसी हैं आप?
1: थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: मैं देख रही हूँ कि आपके गार्डन में बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आप बताइए कि आपके बगीचे में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं?
1: मैं पेड़ पौधों में बहुत रुचि रखती हूँ, बहुत शौकीन हूँ पेड़ पौधों की। मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जिनमें से कुछ फलों के हैं, जैसे चीकू, आम, संतरा, कटहल, सहजन की फली है, अंजीर है, नींबू है, और इसके अलावा कई सारी वैरायटी के फाइकस लगे हैं। फूलों के भी हैं, जैसे गुड़हल, गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा, रात की रानी, हर सिंगार, मालती, और कई सारी वैरायटी के कनेर भी हैं। मैंने कुछ बोनसाई बनाए हुए हैं, जैसे नीम का है, बरगद, पीपल, और कई सारी वैरायटी के बेगुनवेलिया लगे हैं, एलोवेरा है, ऐसे ही कई सारे पौधे हैं।
0: शिपुल जी, आपके घर आंगन में इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद आपके घर का टेम्परेचर भी कुछ डिग्री कम तो हो ही गया होगा।
1: बिल्कुल, गर्मियों में बिल्कुल कम लगता है, हवा चलती है, ठंडी हवा लगती है, छाया रहती है अच्छी, और जब सर्दियां होती हैं तो भी इतना सुंदर व्यू होता है गार्डन का कि कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं लगती।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, आप अपने गार्डन की देखभाल खुद करती हैं या आपके गार्डन की देखभाल माली करता है?
1: गार्डन की देखभाल, क्योंकि गार्डन बड़ा है तो माली की भी जरूरत होती है पूरी तरह से, और मैं वर्किंग हूँ तो माली लगाया हुआ है, साथ ही मैं भी पूरा पूरा वक्त अपना गार्डन को देती हूँ।
0: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, ये पेड़ पौधे भी एक बच्चे की तरह होते हैं, जितना हम इनको अपने बच्चे की तरह पालते हैं ये उतना हमें उसके बदले में रिटर्न देते हैं।
1: बिल्कुल, बच्चों की तरह ही पालना पड़ता है पेड़ पौधों को, और उनसे बातें भी करते हैं।
0: पक्षियों का शेल्टर ये पेड़ पौधे ही होते हैं, और खासतौर से गर्मियों में पक्षियों को इन पेड़ पौधों की ही तलाश रहती है, तो आपने अपने बगीचे में इन पक्षियों के लिए क्या व्यवस्था की है?
1: वैसे तो इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि पक्षी इन पेड़ पौधों में ही अपने घोंसले बना लेते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं देख करके, और फिर वो नई उड़ान लेते हैं।

0: लेकिन मैंने इसके अलावा कुछ जूट के बने हुए घोंसले और मिट्टी के बने हुए घोंसले भी लगा रखे।
1: तो उनमें आप देखते हैं कि जो जूट और मिट्टी के आपने जो उसमें घोंसले बनाए हुए हैं, तो सच में वहाँ पक्षी आते हैं और अंडे वगैरह देते हैं?
0: कई बार मैंने देखा है कि उनमें घोंसले बनाते हैं और अंडे भी देते हैं।
1: पक्षी अपने घोंसलों में अंडे दे सकें और उनके बच्चे निकल सकें, ये तो आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। इन सब के अलावा आपने और पक्षियों के लिए क्या व्यवस्था की हुई है?
0: पक्षियों के लिए हम नियमित रूप से बाजरा डालते हैं, उसकी हमने एक अलग जगह बना रखी है जहां वो बिल्लियों से सेफ रहते हैं और आराम से बेफिक्र होकर दाना चुग सकते हैं। साथ में ही हमने पानी की व्यवस्था भी की हुई है और नियमित रूप से दाना और पानी हम इन पक्षियों के लिए रखते हैं।
1: पेड़ पौधे हरे भरे बने रहें और इनमें अच्छी तरह से फल फूल आते रहें, तो इसके लिए आप क्या करती हैं?
0: इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पेड़ पौधे स्वस्थ रहें, उनमें अच्छे फल आएं, उनमें अच्छे फूल आएं, उसके लिए बराबर उनमें खाद पड़ती है और कई बारी कीटनाशक भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं समय समय पर अगर जरूरत लगती है तब।
1: खाद आप कौन सी डालती हैं?
0: जैविक खाद पड़ती है इसके अंदर, कई बारी गोबर की भी खाद पड़ती है, तो अलग अलग तरीके की नीम की कली है और इसमें जूट पीट पड़ता है कई बारी, तो कई सारी चीजें हैं जो नियमित रूप से उनके वक्त के अनुसार डाली जाती है कि किस मौसम में या किस समय किस पेड़ को क्या चीज की जरूरत है।
1: तो ये आप जो है पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है, और कहते हैं कि प्रकृति है तो सब कुछ है। तो आपने अपने घर में इतनी सुंदर बगिया बनाई है और आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। शिपुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: तो मैंने अभी आपने सुनी हमारी बातचीत कि किस तरह से एक महिला अपने घर को, पूरी बगिया को अपने घर के अंदर सजाए हुए है। हम उम्मीद करते हैं बहनों कि आप भी इसी तरह से अपने घर में, जहां अगर आपके पास स्पेस है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। और अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हो रहा है। कार्यक्रम घर संसार समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी वंदना तुली को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हमारी बहनों का कार्यक्रम घर संसार, और अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अशोक कुमार वर्मा की आवाज में कुछ भजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

इसी भजन के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को है। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: outbreak response team to Gujarat and Rajasthan to strengthen the response to the ongoing Chandipura virus disease outbreak. The Health and Family Welfare Ministry said that a key focus of the investigation is to unravel the virus transmission cycle. It said that while sand flies are the established vectors of Chandipura virus, scientists are also examining whether other arthropods have a role in its transmission. Tamil Nadu Finance Minister N. Marie Wilson today presented the TVK government's first budget in the Assembly. Chief Minister C. Joseph Vijay's government has set a target of becoming $1.5 trillion economy by 2031. Relief and restoration work has intensified across the flood-affected districts of Odisha as water levels continue to recede. We have more from a correspondent.
1: The state government says cooked food, dry rations, safe drinking water, medicines and other essential supplies are being distributed, while efforts are underway to restore roads, electricity and drinking water facilities. However, people in several flood-hit areas have alleged that relief has not yet reached them despite extensive damage. Meanwhile, 5 more sluice gates of the Hirakud Dam have been closed, reducing flood water discharge to just 8 gates. The India Meteorological Department has forecast another spell of widespread rainfall across Odisha till the 10th of this month. An orange warning has been issued for Mayurbhanj, while yellow warning remain in force for 13 districts for today. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for extremely heavy rainfall of Assam and Meghalaya today. The IMD has also issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Bihar, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Uttar Pradesh and Uttarakhand for the day. Meanwhile, Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh are expected to witness heavy rainfall for the next 2 days. In Korea Masters Badminton Tournament, three Indian shuttlers, Isharani Barua, Tanvi Sharma and Sriyanshi Valishetty, have entered the second round of the women's singles of the Korea Open in Asan. Isharani Barua defeated South Korea's Lee So-hee in the round of 32, while Tanvi defeated An Ki-won of China. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says people's lives in Jammu and Kashmir and Ladakh transformed after abrogation of Article 370. RBI projects the GDP growth at 6.7%. This financial year says economic growth continues to be supported by resilient demand. Proceedings of both houses of parliament continue to witness disruption over several issues. Supreme Court says authorities must exercise restraint while responding to young protesters. Students protest against alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations intensifies in Ranchi. Red warning issued for extremely heavy rainfall of Assam and Meghalaya. And in badminton, three Indian shuttlers enter the second round of the women's singles of the Korea Open in Assam. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती

0: बना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
4: हेडलाइन इन्फ्लेशन
3: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी

0: ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर,
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली

0: अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
3: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,500

0: 21 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले दो दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 7 वर्ष। पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 2:30 हो चुके हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज की पहली प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं पंडित सी आर व्यास का राग मिश्र कौशिया में गायन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का राग मिश्र कौशिया में गायन। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का राग मिश्र तिलक कामोद में गायन।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का राग मिश्र तिलक कामोद में गायन। इसी के साथ उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति थी फिल्म पतिता से। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के युगल स्वर थे। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की धुन। अगला गीत है फिल्म श्री 420 से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं। शैलेंद्र की रचना को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश को आपने सुना फिल्म अनाड़ी में। शंकर जयकिशन की धुन पर बोल थे शैलेंद्र के। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है।

अलका याग्निक की आवाज में यह गीत था फिल्म दिल क्या करे से। जतिन ललित की धुन पर बोल थे आनंद बख्शी के। अगला तराना है अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना है, ए आर रहमान की संगीत रचना। फिल्म का नाम है पुकार।

अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वर थे, समीर का गीत, अनु मलिक का संगीत, फिल्म का नाम था बादशाह। कार्यक्रम गीत गुंजन की अगली पेशकश में आइए सुनते हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण को फिल्म दिल है तुम्हारा में। नदीम श्रवण की धुन पर समीर के बोल हैं।

अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वर थे। सुधाकर शर्मा की रचना को संगीत में ढाला था हिमेश रेशमिया ने। फिल्म का नाम था हमराज। इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायकालीन सभा के प्रसारण के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। शाम के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और वापसी के लिए चर्चा शुरू कर दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में और संशोधन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार और फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर

0: 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्रीरामराज, अश्मिता चालिहा और श्रेयांसी वलुशेट्टी ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। आइए लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी संग्रहालय अनुदान योजना विषय पर। सुनिएगा वार्ता, भारत में सतत और समावेशी रोजगार सृजन। वार्ताकार होंगी गौरवी। सेगमेंट आइए जाने में आज जानेंगे मृत्युदंड यानी फांसी की सजा के विषय में। सेगमेंट जीने की कला में आज लीजिएगा जानकारी त्यागें असफलता का बोझ विषय पर। हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक शाम 6:00, जिसमें आज चर्चा होगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के विषय में। साथ ही होगी वार्ता जिसका विषय होगा उर्वरकों का कैसे करें संतुलित प्रयोग। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नेत्रपाल सिंह मलिक। अन्य सेगमेंट होंगे नई किस्में, लीजिएगा मौसम का हाल और जानिएगा मंडी भाव, साथ ही आनंद लीजिएगा लोक गीतों का।

हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी सभ्यताओं के बीच संवाद की आवश्यकता। सुनिएगा सर्वेश कुमार यादव से काव्य पाठ। होगा आज का प्रश्न ज्ञान सागर, लीजिएगा सेहत टिप्स और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। शाम 7:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता आधुनिक हिंदी नाटकों में इतिहास बोध। वार्ताकार होंगे दिलीप रघुवंशी। श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुन सकते हैं शाम 7:31 पर। रात्रि 8:00 हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी संसद समीक्षा। और श्रोताओं, रात्रि 8:20 पर हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होगी विधानमंडल समीक्षा।

फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। श्रोताओ रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है और रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। रात्रि 10:30 पर हमारे श्रोता आनंद ले सकते हैं शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित राजन साजन मिश्र से राग दरबारी कानड़ा और राग बिहाग में ख्याल गायन। समय याद रखिएगा रात्रि 10:30।

श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त है भक्ति परक फिल्म संगीत के कार्यक्रम सूर्य संध्या का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम सूर्य संध्या की पहली भक्ति रचना मरते दम तक फिल्म से। आवाजें महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर और शब्बीर कुमार की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। तो आइए सुनते हैं मरते दम तक फिल्म से ये भक्ति रचना।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सूर्य संध्या में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं किशन कन्हैया फिल्म से ये भक्ति रचना, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों के स्वर में। बोल लिखे हैं इंदीवर ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

की आवाजों में श्रोताओं, इन भक्त रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यही संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:30 हुए हैं, वक्त हो चुका है कार्यक्रम युववाणी का। तो आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है दिन बढ़िया चल रहा होगा आपका। अच्छा एक बात बताइए, जब भी छुट्टियां पड़ती हैं आप घूमने कहाँ जाना पसंद करते हैं? कोई पहाड़ों की तरफ भागता है तो कोई समंदर किनारे बैठना चाहता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो वहाँ की असली कहानी कहाँ छिपी होती है? दोस्तों वो कहानी छिपी होती है वहाँ के पुरानी इमारतों में, पुरानी तस्वीरों में, सिक्कों में, पुराने हथियारों में, यानी वहाँ के संग्रहालय यानी म्यूजियम में। हम में से बहुत सारे लोग स्कूल की ट्रिप में एक बार तो म्यूजियम ज़रूर गए होंगे, फिर शायद कभी लौट कर गए ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये म्यूजियम चलते कैसे हैं? इनकी देखभाल कौन करता है? पुरानी चीज़ों को सालों साल सुरक्षित कैसे रखा जाता है? इसी से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प सरकारी योजना है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले मुझसे मिलिए, मैं हूँ आपकी साथी, आपकी दोस्त रोशनी शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का आकाशवाणी आगरा के यूथ स्पेशल कार्यक्रम युववाणी में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस दिलचस्प योजना की, जो है संग्रहालय अनुदान योजना। तो हुआ ये कि हमारे देश में बहुत सारे म्यूजियम पुराने हो चुके हैं, कहीं इमारतें टूटी फूटी हैं, कहीं पुरानी चीज़ों को ठीक से रखने का सामान नहीं है, और कहीं डिजिटल जानकारी नहीं है। तो संस्कृति मंत्रालय यानी सरकार का वो विभाग जो हमारी कला संस्कृति की देखभाल करता है, उसने एक योजना बनाई जिसका मकसद है म्यूजियम को मजबूत और आधुनिक बनाना। दोस्तों अब ये मदद किसे मिलती है? हम लोगों को क्या? दोस्तों ये मदद सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि राज्य सरकारों को, कुछ खास तरह के रजिस्टर्ड सोसाइटी को, ट्रस्ट को और स्थानीय निकायों को भी। यानी अगर किसी शहर में कोई पुराना ऐतिहासिक म्यूजियम है जिसे ठीक ठाक करने की ज़रूरत है तो वहाँ के लोग इस योजना के तहत पैसे के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि पैसे से होता क्या है? कई काम होते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए म्यूजियम की बिल्डिंग पुरानी हो गई तो उसे ठीक कराना, पुरानी चीज़ों जैसे मूर्तियाँ, सिक्के, पेंटिंग को सही तरीके से सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक अलमारियाँ और तकनीक लगाना। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी काम है डिजिटलीकरण, यानी हर चीज़ की फ़ोटो और जानकारी को कंप्यूटर में सेव करना, ताकि अगर कभी असली चीज़ ख़राब भी हो जाए तो उसकी जानकारी हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। साथ ही म्यूजियम में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग देना भी इसी योजना का हिस्सा है, ताकि वो पुरानी चीज़ों की सही देखभाल कर सकें। दोस्तों एक बहुत प्यारा मकसद इस योजना का ये भी है कि हर राज्य की राजधानी में कम से कम एक बड़ा अच्छा म्यूजियम ज़रूर हो। सोचिए अगर हर राज्य में एक शानदार म्यूजियम हो तो हम अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को वहाँ ले जाकर अपने इतिहास से मिला सकते हैं। और सिर्फ बनाना ही काफ़ी नहीं, ये योजना ये भी कहती है कि जिन म्यूजियम को पैसा मिला है वो अगले 5 साल तक बताते रहेंगे कि हर साल कितने लोग वहाँ घूमने आए। इससे सरकार को पता चलता है कि पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा, हमारे फायदे की बात है क्या इसमें कोई? तो फ़ायदा ये है कि जब म्यूज़ियम अच्छे बनेंगे, दिलचस्प बनेंगे, तो हम जैसे युवा वहाँ जाना पसंद करेंगे, हमें अपनी संस्कृति

0: अपने इतिहास के बारे में पता चलेगा, वो भी मजे मजे में, आनंद लेते हुए। साथ ही अच्छे म्यूजियम बनने से पर्यटन भी बढ़ता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। और दोस्तों, जैसे ही मैंने रोजगार की बात की, मुझे याद आया कि आज हमारे साथ एक खास साथी हैं जो बात करेंगे एक और बहुत जरूरी विषय की, भारत में सतत और समावेशी रोजगार सृजन की, जो सीधे आपके और मेरे भविष्य से जुड़ा है। यानी ऐसा रोजगार जो टिकाऊ भी हो और सबके लिए हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो। इसी विषय पर हमारे लिए खास प्रस्तुति लेकर आई हैं गौरवी। तो चलिए जानते हैं गौरवी से इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में।
1: आज जब हम भारत में सतत और समावेशी रोजगार सृजन की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक सवाल अपने आप से पूछना पड़ता है, वो ये कि क्या हमें उपाधि या डिग्री लेते ही नौकरी मिल जाती है, या क्या तकनीकी प्रशिक्षण जैसे ITI, अभियंत्र की डिग्री या स्नातकोत्तर जैसे MA आदि करने के बाद भी युवा कोई भी काम चलेगा कहकर आवेदन पत्र भरते हैं? अगर उत्तर नहीं है तो फिर बात करना आवश्यक हो जाता है, और बात भी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, धरती की सच्चाई की। दोस्तों, भारत संसार का सबसे युवा देश है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक हमारी कार्यायु जनसंख्या यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन 100 करोड़ के पार चली जाएगी। ये डेमोग्राफिक डिविडेंट है। लेकिन इस युवा पीढ़ी को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बात याद रखनी होगी। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो क्या ये सपना हमें सोने दे रहा है? दरअसल, धरती की सच्चाई को समझना बहुत आवश्यक है। एक आर्थिक सर्वेक्षण CMIE डेटा के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर कभी 7%, कभी 9% रहती है। लेकिन असली समस्या सिर्फ बेरोजगारी की नहीं है, असली समस्या है अल्प रोजगार और रोजगार की गुणवत्ता की, यानी क्वालिटी ऑफ जॉब्स एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज एक इंजीनियर सामान पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय बन रहा है, एक स्नातक 15,000 से 12,000 के वेतन के लिए 3 पारियों में काम कर रहा है। ये रोजगार तो है, लेकिन क्या ये सतत है? क्या इसमें सम्मान है? क्या इसमें भविष्य है? और दूसरी तरफ हर साल 1 करोड़ नए युवा काम की खोज में आते हैं, और हकीकत ये है कि इतने अवसर बन ही नहीं पा रहे। तो समस्या कहाँ है? समस्या सिर्फ सरकार में नहीं है, समस्या हमारी शिक्षा, हमारे उद्योग और हमारी सोच, तीनों में ही है। अब सतत और समावेशी रोजगार का वास्तविक अर्थ समझते हैं। सतत रोजगार का अर्थ सिर्फ लंबे समय तक चलने वाली नौकरी नहीं है। सतत रोजगार वो है जिसमें आप सीख सकें, प्रगति कर सकें और सम्मान से जी सकें। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राहक हमारे परिसर में सबसे महत्वपूर्ण आगंतुक है, वैसे ही हर श्रमिक अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और समावेशी का अर्थ ये है कि रोजगार सिर्फ बेंगलुरु और गुड़गांव जैसे पोस्ट जगहों तक सीमित ना रहे, बल्कि गांव की बेटी को भी अवसर मिले, जहां 10वीं पास कारीगर को भी अवसर मिले, जहां किसी दिव्यांग को भी अवसर मिले, वो भी बिना उपाधि के। आज अगर आगरा का एक चर्म शिल्पकार यानी लेदर आर्टिशन सामाजिक संचार माध्यम पर अपना काम बेचकर महीने के 40,000 कमा रहा है, तो वो भी समावेशी रोजगार है। अगर एक महिला ऑनलाइन शिक्षण देकर 4 बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो भी सतत रोजगार है। अब बात आती है कि अवसर कहाँ हैं और कठिनाई कहाँ है। तो दोस्तों, अवसर हैं, मैं इनकार नहीं करूंगी। आप हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी को ही ले लें, सूर्य ऊर्जा, विद्युत वाहन यानी EV, कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट, 2030 तक इनमें 35 लाख नए अवसर बनने का अनुमान है। लेकिन उसके लिए तकनीकी रूप से सक्षम युवा चाहिए, अभियंता चाहिए, उपाधि नहीं कौशल चाहिए। अब सूचना और सृजन अर्थव्यवस्था को ही देख लीजिए। आज एक 19 साल का युवा वीडियो मंच से तो एक युवती चित्र साझा करने वाले मंच से कमा रही है। अनुषांगिक अर्थव्यवस्था, भोजन पहुंचाने और गृह सेवा देने वाली कंपनियों ने लाखों काम दिया है। लेकिन कठिनाई ये है कि इसमें ना तो भविष्य निधि है और ना ही स्वास्थ्य सुरक्षा। तो क्या ये सतत है? भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान से कारखाने तो आए हैं, लेकिन 90% रोजगार अभी भी लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग MSME देते हैं, और लघु उद्योग आदि को ऋण, बाजार और तकनीक, तीनों की ही मूलभूत दिक्कत है। कृषि और सहयोगी क्षेत्र की यदि बात करें, तो खेती अब सिर्फ खेती नहीं रही, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग,

0: यानी ऑर्गेनिक, कृषि तकनीक यानी एग्रीटेक आदि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लेकिन किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि उसमें आय की निश्चितता नहीं है। तो अवसर तो मौजूद हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए सेतु नहीं है। वो सेतु है कौशल, धन और समुचित जानकारी का। वर्तमान की तीन बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, कौशल की कमी। हर साल लाखों स्नातक निकलते हैं, लेकिन उद्योग जगत कहता है कि कुशल कारीगर लोग ही नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि हमने उपाधि को कौशल से बड़ा मान लिया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दूसरी चुनौती, महिलाओं की भागीदारी। विश्व बैंक कहता है कि भारत में सिर्फ 24% महिलाएं ही कार्यबल का हिस्सा हैं, मतलब 4 में से 3 महिलाएं गृह कार्यों में हैं। कारण, सुरक्षा चाहिए, शिशु देखभाल और समाज क्या कहेगा। तीसरी चुनौती है असंगठित क्षेत्र। भारत का 80% कार्यबल असंगठित है। ठेले वाला, दर्जी, बढ़ई, इनके पास ना तो अनुबंध है ना सुरक्षा। कोरोना काल में सबसे पहले यही लोग सड़क पर आए। समाधान के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली, शिक्षा को उद्योग से जोड़ा जाए। महाविद्यालय में 4 साल सिद्धांत पढ़ाने की बजाय 1 साल व्यवहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, लघु उद्योग यानी एमएसएमई को वास्तविक शक्ति प्रदान की जाए। बड़े व्यवसायिक संस्थान कर की छूट यानी टैक्स ब्रेक मांगता है, लेकिन असली रोजगार छोटी दुकान और छोटे कारखाने से आता है। हम युवाओं की भी सोच बदलनी होगी। हम सब सरकारी नौकरी के पीछे ही क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा के साथ जोखिम भी लेना पड़ेगा। नया व्यापार असफल होगा, लेकिन 10 लोगों को काम देगा। फ्रीलांसिंग में अनिश्चितता है, लेकिन स्वतंत्रता भी है। जिसे रतन टाटा ने कहा था, मैं सही निर्णय लेने पे विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। तो दोस्तों, अंत में मैं कोई झूठा सपना नहीं दिखाना चाहती। हाँ, बेरोजगारी है, मानती हूँ, प्रतिस्पर्धा बहुत है और व्यवस्था में भी कमियां हैं, लेकिन इनके साथ ये भी सच है कि अवसर भी पहले से अधिक हैं। सतत और समावेशी रोजगार सृजन का अर्थ है एक ऐसा भारत बनाना जहाँ कोई भी युवा ये ना कह सके कि मेरे लिए कुछ काम नहीं है। जहाँ गांव का लड़का भी गांव में ही नया व्यापार शुरू करे, जहाँ शहर की लड़की बिना घर छोड़े काम कर सके, और जहाँ मेहनत का सम्मान हो, चाहे वो कोड लिखना हो या जूता बनाना। किंतु ये कार्य सिर्फ सरकार का नहीं है, ये हम सबका है। सरकार नीति बनाएगी, उद्योग अवसर देगा, लेकिन परिश्रम हमें खुद करना पड़ेगा। मैं अपनी बात एक पंक्ति से समाप्त करूंगी, रोजगार मांगने से नहीं मिलता, रोजगार बनाना पड़ता है।
1: गौरवी ने सही कहा दोस्तों, रोजगार सिर्फ एक नौकरी पाने भर की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज को आगे बढ़ाने का जरिया है। जब लोगों के हाथ में काम होता है तो घर चलता है, परिवार खुश रहता है और पूरा देश तरक्की करता है। तो दोस्तों, जैसे एक मजबूत और खुशहाल समाज के लिए रोजगार जरूरी है, ठीक वैसे ही उस समाज में सबकी सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए एक मजबूत कानून व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। और जब बात कानून की आती है तो कानून की सबसे सख्त और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सजाओं में से एक है मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा। दोस्तों, जब कोई अपराध इतना गंभीर, इतना घिनौना होता है कि अदालत को लगता है कि इसके लिए जेल की सजा काफी नहीं है, तब कोर्ट सबसे बड़ी सजा यानी मौत की सजा सुना सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सजा हर छोटे मोटे अपराध पर लागू नहीं होती। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले एक बहुत मशहूर फैसले में कहा था कि मृत्यु दंड सिर्फ उन मामलों में दिया जाना चाहिए जो दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, मतलब जब अपराध इतना भयानक हो कि पूरे समाज की अंतरात्मा हिल जाए, तभी ये सबसे कड़ी सजा दी जाती है। दोस्तों, जिस फांसी की सजा को आज के समय में अदालतें सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में देने की बात करती हैं, एक समय ऐसा भी था जब इसी फांसी की सजा का इस्तेमाल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज दबाने के लिए किया जाता था। अंग्रेजी हुकूमत ने कई वीर क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन उनके हौसले और देशभक्ति को कभी दबा नहीं सके। दोस्तों।

स्वतंत्रता सेनानियों की बात चल रही है तो मुझे आज के दिन से जुड़ी एक खास बात याद आ गई। आज एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि है जिन्होंने आज़ादी के बाद अपने राज्य के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। वे असम के पहले मुख्यमंत्री बने और उन्हें आधुनिक असम का शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न असम भी कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, आज हम किस महान स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मना रहे हैं? इसका सही जवाब मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगी, तब तक आप भी जरा सोचिए। तो हम बात कर रहे थे मृत्युदंड की। दोस्तों, आज के समय में जब भी किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तो वह सजा तुरंत लागू नहीं हो जाती। इसके पीछे भी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले निचली अदालत अपना फैसला सुनाती है, उसके बाद उस फैसले की पुष्टि हाई कोर्ट से होना जरूरी होती है। फिर दोषी व्यक्ति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है, और अगर वहां भी सजा बरकरार रहती है तब भी कानून एक आखिरी मौका देता है। दोषी व्यक्ति राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत दया याचिका दाखिल कर सकता है। यानी कानून हर संभव कोशिश करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गलती से इतनी बड़ी सजा न मिल जाए। यही वजह है कि मृत्युदंड से जुड़े मामलों में हर कदम बहुत सोच समझकर और पूरी सावधानी के साथ उठाया जाता है। दोस्तों, ये विषय ऐसा है जिस पर बहुत बहस भी होती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि मृत्युदंड जरूरी है, इससे अपराधियों में डर बना रहता है और बड़े अपराध रुकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग और मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अगर गलती से किसी निर्दोष को सजा मिल जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में मृत्युदंड को खत्म कर दिया है, जबकि भारत जैसे कुछ देशों में ये आज भी सबसे गंभीर अपराधों के लिए मौजूद है। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखने लायक है कि कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय बनाए रखना भी है। इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर कानून का सम्मान करना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां अपराध होने की नौबत ही ना आए। इन्हीं विचारों के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिक ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद युववाणी में बातचीत का ये खूबसूरत सिलसिला फिर से आगे बढ़ेगा।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। उम्मीद है कि संगीत की ये छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जिंदगी में हम सभी कुछ ना कुछ बनने का सपना तो जरूर देखते हैं। कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है, कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, तो कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहता है। लेकिन हर सपना पहली ही कोशिश में पूरा हो जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं। कई बार मेहनत पूरी होती है लेकिन नतीजा हमारे मन के अनुसार नहीं हो आता। ऐसे में कुछ लोग खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी एक असफलता को ही अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। धीरे धीरे वे सोचने लगते हैं कि अब उनसे कुछ नहीं होगा। जबकि सच तो ये है कि असफलता हमारी मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुँचने का एक पड़ाव है। दोस्तों, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय एक दो बार गिर जाए और उसी दिन ये तय कर ले कि ये कभी भी साइकिल नहीं चलाएगा, तो क्या वह कभी सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। वह बार बार कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है और एक दिन बिना सहारे साइकिल चलाने लगता है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। असफलता हमें ये नहीं बताती कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि ये बताती है कि अभी हमें कुछ और सीखने की ज़रूरत है। हर गलती अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है, इसलिए अपनी गलतियों से भागने की बजाय उनसे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए दोस्तों, दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति ने कभी ना कभी असफलता का सामना ज़रूर किया होगा। अगर वे उस समय हार मान लेते तो शायद आज दुनिया उन्हें उस नाम से नहीं जानती। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय कल के अपने आप से कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा भी बेहतर बने तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक बात और हमेशा याद रखिए कि असफल

सफलता का बोझ जितना ज्यादा हम अपने मन में उठाकर चलते हैं, उतना ही आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुरानी हार को अपने दिल पर पत्थर बनाकर मत रखिए, उसे एक अनुभव की तरह स्वीकार कीजिए और नए उत्साह के साथ अगला कदम बढ़ाइए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में आगे आने वाली ठोकरों से घबराकर रुकती नहीं। इसी सकारात्मक सोच के साथ अब समय हो गया है एक और संगीत विराम का। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद युववाणी में फिर मुलाकात होगी।

है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

दोस्तों, आप पहुंच गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में, जहां हम जानेंगे आज के सवाल का उत्तर। तो हमने आपसे पूछा था कि आज हम किस महान स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिन्हें आधुनिक असम का शिल्पकार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई। दोस्तों, गोपीनाथ बारदोलोई असम के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और दूरदर्शी नेता थे। देश के प्रति उनकी सेवाओं को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब मुझे यानी रोशनी शर्मा को दीजिए अनुमति। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी, मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। हमारे ग्रामीण अंचल के साथियों को इंतजार होगा अपने कार्यक्रम ग्रामीण लोक का।

कार्यक्रम ग्रामीलोक की चौपाल में बैठकर अपने मनपसंद कार्यक्रम को सुन रहे सभी भाई बहनों को लोकेंद्र पाठक की राम राम। साथियों, सावन का महीना चल रहा है, कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं खेतों में पानी लबालब भरा हुआ है। लेकिन मित्रों, कहीं ऐसा भी है कि किसान साथी बादलों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। खेतों में बाजरा, ज्वार, मूंग और उड़द की फसलें अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी हैं और गांव की चौपाल भर भी खेती की बातें ही हो रही हैं। मित्रों, बरसात की हर बूंद किसान के चेहरे पर मुस्कान ले आती है, लेकिन एक समझदार किसान मात्र आज की फसल के विषय में नहीं सोचता है, वो आने वाले अनेक वर्षों की खेती के बारे में भी सोचता है। वो चाहता है कि उसकी जमीन उपजाऊ बनी रहे और आने वाली पीढ़ी भी उसी खेत से अच्छी पैदावार ले ले। एक अच्छा किसान जैसे अपनी खेती में उन्नति देखना चाहता है, ठीक वैसे ही एक अच्छा नेता अपने देश की उन्नति देखना चाहता है, जैसे लोकप्रिय नेता गोपीनाथ बारदोलोई देखना चाहते थे। आज गोपीनाथ बारदोलोई की पुण्यतिथि है। वे असम के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न से सम्मानित महान जन नेता थे। लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के कारण ही उन्हें प्यार से लोकप्रिय कहा जाता था। वो सदैव गांव, किसान और आम लोगों का विकास चाहते थे, किसानों को समृद्ध देखना चाहते थे। उनका सपना, उनका अभियान आज भी चल रहा है। आज सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना से हमारे किसान साथियों को समृद्ध करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जब गांव मजबूत होंगे, किसान समृद्ध होगा, खेती आगे बढ़ेगी, तभी देश की असली उन्नति होगी। मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना से आज किसानों की खेत की मिट्टी में सुधार हो रहा है, खेत उपजाऊ बन रहे हैं और खेती से हम किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, यानी पहले से हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं। साथियों, गांव में कई बार ऐसी जमीन भी देखने को मिल जाती है जो वर्षों से खाली पड़ी रहती है। कहीं जमीन ऊसर हो गई है तो कहीं बीहड़ जैसी दिखाई दे रही है, तो कहीं पानी की कमी के कारण खेती करना ही बहुत कठिन हो गया है। यदि ये जमीन खेती के लायक बन जाए तो हम किसानों की आमदनी तो बढ़ सकती ही है। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर, बीहड़ या अनुपयोगी भूमि को सुधार कर उसे खेती के योग्य बनाना और किसानों की आय बढ़ाने में सहायता करना है। सरल भाषा में कहें तो जो जमीन आज कम उपज दे रही है या जिस पर खेती करना ही कठिन हो गया है, उसे बेहतर बनाने के लिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। साथियों, इस योजना के अंतर्गत भूमि समतलीकरण, खेत सुधार, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, मेड़बंदी और खेती को उपयोगी बनाने वाले अनेक कार्यों में सहायता दी जाती है। यदि खेत में पानी रुकने की अच्छी व्यवस्था हो जाए, मिट्टी का कटाव कम हो जाए और भूमि समतल हो जाए, तो वही खेत पहले की तुलना में कहीं अधिक अच्छी फसल देने लगता है। साथियों, इस योजना में बागवानी और कृषि वानिकी जैसे कार्यों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी किसान चाहे तो फलदार पौधे लगाकर या पेड़ों की खेती करके भी अच्छे पैसे कमा सकता है। मित्रों, आज बहुत से किसान अमरूद, नींबू, सहजन, आंवला और अन्य फलदार पौधों को मेड़ों पे लगा के, खेत की मेड़ों पर लगा के अतिरिक्त पैसे कमा रहे हैं।

अच्छा, हमने बहुत बार देखा है कि बरसात का पानी बहकर निकल जाता है, यदि उसी पानी को खेत या छोटे तालाब में रोक लिया जाए तो वही पानी आगे चलकर सिंचाई के काम आता है। इस योजना में इस बात का भी ध्यान रखा गया है। मित्रों, ये योजना बस किसानों को कुछ पैसे यानी अनुदान देना नहीं चाहती है, बल्कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जिससे वो अपनी जमीन से अच्छी खेती करके लंबे समय तक अच्छा पैसा कमा सकें। साथियों, इस योजना की विस्तृत जानकारी आपको अपने विकास खंड, कृषि विभाग या संबंधित कार्यालय से मिल जाएगी, और आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके खेत का कोई हिस्सा खेती में प्रयोग नहीं हो रहा है या भूमि सुधार की आवश्यकता है, तो इस योजना का लाभ आपको मिल जाएगा। साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, धरती माँ को जितना दोगे उसका दोगुना वो लौटा कर देगी। यदि हम मिट्टी की देखभाल करेंगे, पानी बचाएंगे और खेत को सुधारेंगे, तो हमारे खेत भी हमें भरपूर उपज देंगे। आज खेती केवल हल और बैलों या ट्रैक्टर तक सीमित नहीं रह गई है, अब भूमि सुधार, जल संरक्षण, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती भी उतनी ही जरूरी हो गई है। एक बात याद रखिए, खेत की असली ताकत केवल अच्छी बारिश नहीं होती है, बल्कि स्वस्थ मिट्टी भी होती है। जब मिट्टी मजबूत होगी तब फसल भी मजबूत हो ही जाएगी। मित्रों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी खेती को केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी समृद्ध बनाना है। साथियों, जब खेत से एक किसान घर को लौटता है तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो जिससे उसकी थकान दूर हो जाए, और इसके लिए गीत संगीत से बढ़कर क्या हो सकता है? तो आइए सुनते हैं कृष्ण गोपाल शर्मा के सुरों में ये लोकगीत।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: साथियों, फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आवश्यकता से अधिक उर्वरक डालने से न केवल खर्च बढ़ता है बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और फसल की गुणवत्ता दोनों पर बुरा असर पड़ता है। खेत में उर्वरकों का प्रयोग हमेशा मृदा परीक्षण की रिपोर्ट यानी मिट्टी की जांच की रिपोर्ट और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। रासायनिक खाद के साथ गोबर की खाद, कंपोस्ट या हरी खाद का भी उपयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ और स्वस्थ बनी रहती है। उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कैसे करना चाहिए, आइए डॉक्टर नेत्रपाल सिंह मलिक से इसे विस्तार से समझते हैं।
4: किसान भाई बहनों, जब हम अपने खेतों में फसलों की बुआई करते हैं तो हमारी यही कामना होती है हमें अपनी फसलों से भरपूर उत्पादन मिले। इसके लिए हम कड़ी मेहनत करने के साथ साथ फसलों में

समय पर खाद, पानी, दवाई इत्यादि देते रहते हैं। आजकल कृषकों में एक धारणा बन गई है कि जितना ज्यादा से ज्यादा उर्वरक, विशेष रूप से यूरिया का प्रयोग किया जाएगा, उत्पादन उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा। इस धारणा के चलते ही किसान भाई कुछ उर्वरकों जैसे आलू की फसल में DAP एवं अन्य फसलों में यूरिया का बहुत ज्यादा प्रयोग कर डालते हैं एवं कुछ उर्वरकों की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसान भाई एक ओर तो उर्वरकों पर अनावश्यक खर्च कर डालते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें उतना उत्पादन भी नहीं मिल पाता जितना कि वो थोड़ी सी समझदारी दिखाने पर ले सकते थे। किसान भाइयों, हमें अपनी फसल से भरपूर उत्पादन तभी मिल सकता है जब हम उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें। इसके लिए सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से आशय क्या है। किसान भाइयों, पौधों को वृद्धि और जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बोरान, मोनिब्डेनम और क्लोरीन। पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी एवं हवा से प्राप्त हो जाते हैं। शेष पोषक तत्व पौधा मिट्टी से लेता है। पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है एवं लोहा, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम व क्लोरीन की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि हमारे खेत की मिट्टी में इनमें से किसी भी पोषक तत्व की उपलब्धता फसल की आवश्यकता से कम है तो इसकी पूर्ति हम उर्वरकों के माध्यम से करते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं फसल की पोषक तत्वों की आधार पर गणना कर उर्वरकों की उचित मात्रा का प्रयोग करना ही उर्वरकों का संतुलित प्रयोग है। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि हमारे खेत की मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है एवं फसल का भरपूर उत्पादन लेने के लिए पोषक तत्वों की कितनी मात्रा उर्वरकों के माध्यम से देनी होगी। इसके लिए आवश्यक है कि किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराएं। मिट्टी की जांच कराने के लिए कृषक भाइयों को अपने खेत की मिट्टी का नमूना अपने निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला तक पहुंचाना होगा। खेत से मिट्टी का नमूना लेते समय हमें कुछ बिंदुओं का अनुसरण करना होता है। प्रत्येक खेत का अलग अलग नमूना लेना चाहिए। यदि खेत में ली गई फसल मिट्टी की किस्म, रंग व ढाल आदि के कारण समान न हो तब खेत को उसकी विभिन्नता के आधार पर खंडों में विभक्त करके प्रत्येक खंड का अलग अलग नमूना लें। मृदा का नमूना लेने के लिए खेत के प्रत्येक भाग से खुरपी या फावड़े की सहायता से ऊपरी सतह से 6 इंच गहराई तक की मिट्टी समान रूप से निकालकर एक स्थान पर एकत्र कर लें। इस मिट्टी को गोलाकार आकार में फैला लें। इस गोले में हाथ व लकड़ी की सहायता से इस प्रकार से क्रॉस बनाएं कि मिट्टी 4 बराबर भागों में बट जाए। आमने सामने के 2 भागों की मिट्टी को पुनः आपस में मिलाकर गोलाकार में फैला लें। शेष मिट्टी को फेंक दें। बची हुई मिट्टी को पूर्व की भांति फिर 4 भागों में बांट लें। 2 भागों की मिट्टी रख लें व शेष मिट्टी फेंक दें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते जाएं जब तक कि लगभग आधा किलोग्राम मिट्टी शेष न रह जाए। यह मिट्टी ही खेत का मृदा नमूना है। मिट्टी के इस नमूने को कपड़े या पॉलीथीन के साफ थैली में भर लें। नमूनों को प्रयोगशाला भेजते समय कृषक अपना नाम, पता, खेत की पहचान, पिछली फसल का विवरण, भविष्य में बोई जाने वाली फसल इत्यादि जानकारी भी नमूने के साथ भेजें। मिट्टी का नमूना लेते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, जैसे वृक्षों तथा मकानों के निकटवर्ती स्थलों, सिंचाई की नाली, खाद के ढेर, तुरंत ही उर्वरक दिए गए स्थानों से मृदा नमूना नहीं लेना चाहिए। नमूने की थैली को उर्वरकों के बोरों के संपर्क में न आने दें। खेत का नमूना फसल बुआई के 1 माह पूर्व या फसल कटने के उपरांत एकत्र करें। गीले नमूनों को छाया में सुखाकर ही थैलों में भरें। इस प्रकार से हमें मिट्टी की जांच के आधार पर अपने खेत की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति एवं ली जाने वाली फसल के लिए उर्वरकों के माध्यम से दी जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात हो जाती है। उर्वरकों के माध्यम से फसल में दिए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात हो जाने पर अब बारी आती है उर्वरकों के चयन की। सामान्यतः नाइट्रोजन के लिए यूरिया, फास्फोरस के लिए डाई अमोनियम फास्फेट व पोटास के लिए म्यूरोटो पोटास एवं मिश्रित उर्वरकों के रूप में NPK 12-32-16, NPK 10-26-26 उर्वरक बाजार में उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम

0: नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट इत्यादि फास्फोरस युक्त उर्वरकों में डाई कैल्शियम फास्फेट, सुपर फास्फेट इत्यादि एवं पोटाश युक्त उर्वरकों में काइनाइट, पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि उर्वरक भी उपलब्ध हैं। कृषक भाई निकटतम बाजार या गोदाम में उपलब्ध अनुसार उर्वरकों का चयन कर लें। उर्वरकों के चयन के बाद अब बारी आती है उर्वरकों को फसल में देने की विधि की। उर्वरकों से मिलने वाले पोषक तत्वों को उनकी भूमि में गति के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, चल एवं अचल तत्व। चल तत्व भूमि में डालने पर पानी में घुलकर भूमि की पूरी सतह पर फैल जाते हैं एवं फसल को उपलब्ध हो जाते हैं। नाइट्रोजन इसी प्रकार का तत्व है। अचल तत्व भूमि में जिस स्थान पर डाले जाते हैं वहीं पड़े रहते हैं। यदि पौधों की जड़ इन पोषक तत्वों के पास आ जाती है तो ये उपलब्ध हो जाते हैं, अन्यथा भूमि में ही पड़े रहते हैं। फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता आदि इसी प्रकार के तत्व हैं। सामान्यतः अचल तत्वों वाले उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई या रोपाई के समय प्रारंभिक खुराक के रूप में दे देते हैं। अचल पोषक तत्वों को वाले उर्वरक की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रयास करना चाहिए कि ये उर्वरक बीज के नीचे गिरे। पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता वृद्धि के आरंभ में कम, वृद्धि के समय अधिक एवं वृद्धि काल व परिपक्वता के समय के बीच कम होती है। अतः नाइट्रोजन के उर्वरकों की कुछ मात्रा बुआई के समय व शेष मात्रा वृद्धि काल तक देते रहते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन की पूर्ति पौधों की परिपक्वता तक करते रहते हैं। जो फसलें 4 से 5 महीने में पकती हैं, उनमें नाइट्रोजन की कुल मात्रा 2 बार में, जो फसलें 9 से 12 महीने में पकती हैं, उनमें 3 से 4 बार में, और जो फसलें इससे अधिक समय तक खेत में खड़ी रहती हैं, जैसे गन्ना, उनमें नाइट्रोजन 4 से 5 बार में देते हैं। इसके अतिरिक्त उर्वरकों के संतुलित उपयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। हल्की रेतीली भूमियों में फसलों की अवधि व किस्म के अनुसार नाइट्रोजन की कुल मात्रा कई बार में देनी चाहिए। यदि हम फसल चक्र में हरी खाद उगा रहे हैं या दलहनी फसल उगा रहे हैं तो इसके बाद वाली फसल को नाइट्रोजन खादों की कम आवश्यकता पड़ती है। यदि खेत में खरपतवार का प्रकोप अधिक है तो फसल की खाद संबंधी आवश्यकता बढ़ जाती है। यदि मृदा में नमी की मात्रा कम है और सिंचाई के साधन भी उपलब्ध नहीं है तो भूमि में खाद की मात्रा भी कम दी जाती है। भूमि में जीवांश पदार्थ बढ़ाने एवं पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जीवांश खादों के साथ कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। उर्वरक के स्थान पर जहां तक संभव हो जैविक उर्वरक या खादों का प्रयोग करें। इससे अधिकांश सूक्ष्म जीव उर्वरकों के स्थान पर जहां तक संभव हो जैविक उर्वरक या खादों का प्रयोग करें। इससे अधिकांश सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमि में पूर्ति होती है एवं पोषक तत्वों की कुल उपलब्धता भी बढ़ती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश को संयुक्त रूप से व संतुलित रूप से देने से अधिक लाभ है। किसान भाई, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करते हैं तो वे उर्वरकों पर होने वाले अनावश्यक खर्च से तो बच ही सकते हैं, साथ ही उत्पादन भी भरपूर ले सकते हैं।
1: मित्रों, अभी हमने डॉक्टर नेत्रपाल सिंह मलिक से जाना कि उर्वरकों का कैसे करें संतुलित प्रयोग। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, यदि हम अपने खेत में बदल बदल कर फसल लेते हैं तो खेत की मिट्टी भी सही रहती है और फसल भी अच्छी होती है। तो आइए जानते हैं एक नई किस्म के बारे में। साथियों, यदि आप इस खरीफ के मौसम में धान की खेती करना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1885 जैसी उन्नत किस्म पर भी विचार कर सकते हैं। ये कम अवधि में पकने वाली अच्छी गुणवत्ता वाली बासमती किस्म है, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन के साथ अच्छा बाजार मूल्य मिलने की संभावना रहती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बुआई या रोपाई से पहले अपने क्षेत्र के

कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से इसकी उपयुक्त जानकारी अवश्य ले लें। साथ ही हम किसानों के लिए मौसम की जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक होता है, तो आइए अब जान लेते हैं आगरा व आसपास के क्षेत्रों के मौसम का हाल। विगत 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। आसमान में बादल छाए रहे, अनेक स्थानों पर बारिश भी हुई। आगामी 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की भी संभावना है। मित्रों, खेत में उगाई गई फसल का मंडी में क्या भाव चल रहा है, ये जानना भी हम किसानों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो आइए अब जान लेते हैं आगरा मंडी भाव, जहां

तो आइए अब जान लेते हैं आगरा मंडी भाव, जहां सब्जियों के भाव में टमाटर 1,700 से लेकर 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 1,250 से लेकर 1,600 रुपए प्रति क्विंटल, लहसुन 7,000 से 8,500 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अच्छी गुणवत्ता का आलू 1,000 से लेकर 1,200 रुपए प्रति क्विंटल। तो मित्रों, चौपाल की बातें तो चलती ही रहेंगी, आइए अब सुरों की चौपाल सजाते हैं, सुनते हैं राम बालक के मधुर आवाज में ये लोकगीत।

सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी मनीषा अरोरा। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बताइए साथियों, कैसे हैं आप? काम से लौटकर आ ही गए होंगे, है ना? और अब तैयारी होगी कांवड़ यात्रा करने की। जी हाँ, सावन का महीना जो लग गया है तो जाहिर सी बात है कि अगले सोमवार तक आगरा के चारों शिव मंदिरों में दर्शन करने जाना है, और जाना भी पैदल ही है। तो कमर कस ही ली होगी आप सबने, है ना? अरे भाई, हमारे जिन श्रमिक भाइयों के पास काम होता है वो वहां से छुट्टी ले लेते हैं, है ना? लेकिन जिनके पास काम नहीं होता वो भी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके बस काम मिल जाए, इस शहर नहीं तो दूसरे शहर। जी हाँ, एक मजदूर भाई काम की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ भटकता है, लेकिन जब वो अपने शहर या गांव से दूसरे गांव जाता है या कोई दूसरे राज्य तक पहुंचता है तो वहाँ की भाषा अलग, खान पान अलग, पहनावा अलग, और तो और रीति रिवाज भी अलग होते हैं। भाई शुरुआत में तो लगता है कि वो बिल्कुल अनजान दुनिया में आ गया है, लेकिन जैसे जैसे वो लोगों से बात करता है, उनके तौर तरीके समझता है और वो लोग भी उसकी बातें समझते हैं, तो धीरे धीरे दूरियां कम होने लगती हैं, है ना भाई? और अजनबी लोग भी फिर अजनबी नहीं रहते, अपने जैसे लगने लगते हैं। तो यही तो संवाद की ताकत होती है साथियों। इसी तरह हमारी दुनिया में भी कई सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं। हर सभ्यता की अपनी भाषा है, अपनी परंपराएं हैं, अपनी कला है, अपनी सोच है और जीवन जीने का तरीका होता है। अगर हम केवल अपने विचारों को ही सही माने और दूसरों को समझने का प्रयास ना करें तो क्या होगा? तो फिर यही होगा कि गलतफहमियां बढ़ेंगी, विवाद होंगे और टकराव भी बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे से संवाद करते हैं तो केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि हम क्या साझा करते हैं? अपने अनुभव करते हैं, अपने ज्ञान को साझा करते हैं, साथ ही अपनी संस्कृति को भी एक दूसरे से साझा करते हैं। इससे क्या होता है? आपसी सम्मान बढ़ता है और हम शांति की तरफ जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि अलग होना गलत नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। भाई इससे तो समाज ज्यादा समृद्ध बनता है, प्रगतिशील बनता है। तो साथियों, कहा जा सकता है कि सभ्यताओं के बीच संवाद केवल आवश्यकता नहीं होती, बल्कि शांतिपूर्ण, समृद्ध और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। तो चलिए साथियों, इसी बात पर ये प्यारा सा गीत हो जाए। लेकिन उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न भी। तो आपको बताना ये है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? सोचिए सोचिए, जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत तक। अगर आपको जवाब जानना है तो पूरा कार्यक्रम तो सुनना ही पड़ेगा, है ना? तो फिर चलिए अब सुनते हैं ये मधुर गीत।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, साथ ही जाने माने राजनेता भी थे। अरे नहीं समझे, चलिए एक क्लू और देते हैं आपको। उन्होंने असम को भारत का हिस्सा बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे साथियों, हम बात कर रहे हैं असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की, जिन्हें 1999 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। साथियों 6 जून 1890 को असम के राहा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। कैबिनेट मिशन योजना के समय उन्होंने कड़ा विरोध किया ताकि असम को पाकिस्तान या दूसरे भूभाग में मिलने से बचाया जा सके और वो भारत का ही अभिन्न अंग बना रहे। गोपीनाथ बोरदोलोई सन 1946 से सन 1950 तक असम के पहले मुख्यमंत्री रहे। जनता ने उन्हें लोकप्रिय यानी सबसे प्यारा ऐसी उपाधि से सम्मानित किया। 5 अगस्त 1950 को उनका देहांत हो गया। साथियों जानते हैं गुवाहाटी के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं।

0: साथियों, आज हम बात करेंगे उन हाथों की जो सुबह शाम तक मेहनत करते हैं पर कभी थकान का नाम नहीं लेते, जिनके पसीने से ईंट जुड़ती है, सड़क बनती है और देश आगे बढ़ता है। जी हाँ, हमारे श्रमिक भाई बहन ही हैं वो। तो आइए शब्दों के माध्यम से, एहसास के माध्यम से सुनते हैं श्रम की महत्ता पर और श्रमिक अपने मालिकों से क्या निवेदन कर रहा है, वही कविता के माध्यम से सर्वेश कुमार यादव बताने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: मेरी पहली कविता है, ये श्रम की महत्ता पर केंद्रित है और एक श्रमिक अपने मालिकान से कुछ निवेदन कर रहा है। सुनिए, ये सच है कि आपके आलीशान बंगले, कोठी और महलों की चौबारों की रौनक, आपके सूट की क्रीज और आपके बूट की चमक, आपकी कटलरी और क्रॉकरी की खनक, यहाँ तक आपकी रसोई की महक, आपके अभिजात होने की ठसक, आपके गर्व और गुमान की ठनक और भी न जाने क्या क्या, सब कुछ, जी हाँ सब कुछ हमारे श्रम और स्वेद से पोषित है। हाँ, ये भी सच है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हफ्ते 15 दिन हम हवा पानी पर जी लेंगे, किंतु हमारे श्रम और स्वेद के अभाव में आप 2-3 दिन भी शायद ही चल सकेंगे। अतः निवेदन है कि आप हमारे श्रम और स्वेद को मान दें, हम भी जीवित हैं, इंसान हैं, इतना तो मान ही लें, अपनी अति ठसक और अहम को समय रहते लगाम दें, हमारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा न लें, संभलें संभलें संभलें। अगली कविता है मेरी, कृत्रिमता। आज सब कुछ कृत्रिम सा लगता है, बनावटीपन ज्यादा है, दिखावटीपन ज्यादा है, तो इसके लेके कुछ कहने की कोशिश की है। कृत्रिमता के दौर में बाहर और अंतस में सब कृत्रिम कृत्रिम कृत्रिम, आचार कृत्रिम, व्यवहार कृत्रिम, सोच कृत्रिम, विचार कृत्रिम, श्रद्धा कृत्रिम, सम्मान कृत्रिम, मान कृत्रिम, अपमान कृत्रिम, घृणा कृत्रिम, प्यार कृत्रिम, क्रोध कृत्रिम, मनोहार कृत्रिम, आस कृत्रिम, विश्वास कृत्रिम, हास कृत्रिम, परिहास कृत्रिम, रूठना कृत्रिम, मनाना कृत्रिम, भाव कृत्रिम, भावना कृत्रिम, साध्य कृत्रिम, साधना कृत्रिम, आरोह कृत्रिम, अवरोह कृत्रिम, मिलन कृत्रिम, बिछोह कृत्रिम, वेश कृत्रिम, प्रवेश कृत्रिम, संबोधन कृत्रिम, संदेश कृत्रिम, रीज कृत्रिम, खीज कृत्रिम, देवता कृत्रिम, पुजारी कृत्रिम, साहूकार।

0: कृतम, भिखारी कृतम, संपन्नता कृतम, लाचार कृतम, आज के इस दौर में बस कृत्रिम ही कृत्रिम, आज के इस दौर में बस कृत्रिम ही कृत्रिम, कृत्रिम ही कृत्रिम। और अब मैं कुछ हाइकू निवेदन करना चाहूंगा। मेघ रोकते, बरसात कराते, वृक्ष जलाते, वर्षा का जल जमीन को पिलाते, वृक्ष जलाते, जमीन खोद फल फूल ले आते, वृक्ष जलाते, विष हरते वायु शुद्ध करते, वृक्ष जलाते। और एक रचना, हमने सूरज को जुगनू से डरते देखा है, हंसों को भूख से तड़पते देखा है, कौओं को दाख गटकते देखा है, नदियों को पीते नींद, वृक्षों को फल गटकते देखा है, ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है, यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। और आजकल लोग चाय कॉफी पे बहुत ज्यादा बात करते हैं और चाय कॉफी बहुत चलन में भी है, तो चाय कॉफी के महत्व और महत्ता को लेकर कुछ कहने की कोशिश की है। तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों, परस्पर विवादों अथवा व्यक्तिगत विषादों अवसादों का हल है चाय कॉफी। यारों के मिलजुल बैठने बतियाने का माध्यम है चाय कॉफी। स्वागत सत्कार का सहज साधन है चाय कॉफी। मेल जोल का सुंदर सशक्त माध्यम है चाय कॉफी। संक्षेप में कहें तो अनंत संभावनाओं से लवरेज है चाय कॉफी। आओ फिर हो जाए चाय कॉफी। मेरी अगली कविता है जिसमें मैंने आज की परिस्थिति और परिवेश को निवेदन करने की कोशिश की है। हैरान परेशान श्री राम, क्यों बढ़ रहे हर पल रावण अविराम, हर नगर हर कस्बा हर गांव हर गली हर मोहल्ला हर सड़क, विचरते तमाम रावण नितांत बेखौफ बेधड़क, आखिर कितने मोर्चों पर लड़ेगा एक अकेला राम और कब तक। अतः समय की पुकार है कि हम अपने अंतस के राम को जगाएं, परिणाम और परिमाण से बेखौफ बेपरवाह अपने परिवेश के हर छोटे बड़े रावण से लड़ जाएं, रावण के कद और पद के खौफ से बेखौफ बस लड़ जाएं, सतत अनवरत बिना थके बिना हारे बस लड़ते रहें लड़ते रहें लड़ते रहें, अपने कर्तव्य पथ पर पूरे मन से बढ़ते रहें बढ़ते रहें, तभी रावण मरेगा तभी राम जीतेगा तभी राम जीतेगा तभी राम जीतेगा। अब कुछ हाइकू चंद्रमा को लेकर हैं। लोग चंद्रमा को अलग ढंग से देखते हैं, अलग ढंग से बात करते हैं, लेकिन मैंने चंद्रमा को किस ढंग से देखा है आप इन हाइकुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करें। चांद छलिया रोज रूप बदले बहुरूपिया, चांद छलिया रोज रूप बदले बहुरूपिया। अगला हाइकू है, हटवे चांद धोखेबाज छलिया रोती अहिल्या, हटवे चांद धोखेबाज छलिया रोती अहिल्या, छलिया चांद पूरा या अधूरा, चंद्रमा छली पुनो अवस्या दल बदलू। और कविता है जिसमें ये कोशिश की गई कहने की कि सहना और चुप रहना हर चीज का समाधान नहीं होता है, हमें अपनी बात कहनी चाहिए कहनी होगी। जो सहना सीख जाते हैं सच मानिए वे कहना छोड़ देते हैं, संभवतः सच्चाई से और सद प्रयासों से मुख मोड़ लेते हैं, जो सहना सीख जाते हैं वो कहना छोड़ देते हैं। लेकिन ये स्थिति समाज समुदाय और राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। ये सहना और कहना बंद करने की स्थिति है, समाज समुदाय और राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे लोग ही दुष्टों और दुष्टता को प्रश्रय देते हैं। अतः हिम्मत जुटाओ, गिलहरी प्रयास ही सही, बस करो और करते जाओ, बस करो और करते जाओ, निश्चित ही एक दिन वो आएगा कि हमारा प्रयास रंग लाएगा, हमारा प्रयास रंग लाएगा। और अंत में एक कविता आईना के माध्यम से बात कहने की कोशिश की है। आज के हाईटेक काल के आईने भी बेहद करामाती हैं, आज के हाईटेक काल के आईने भी बेहद करामाती हैं, असल से दूर बहुत दूर दिखाते ठकुर सुहाती हैं, आज के हाईटेक युग के आईने भी बहुत करामाती हैं, बिल्कुल नपातुला वही और केवल वही दिखाते हैं, जितना आका ने कहा है केवल वही दिखाते हैं, आज के आईने भी करामाती हैं, आज के आईने भी करामाती हैं।
1: साथियों, अभी आपने सर्वेश कुमार यादव से ये काव्य पाठ सुना। हम उम्मीद करते हैं काव्य पाठ आपको जरूर पसंद आया होगा।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट

0: करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है. किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें.
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान. किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें. भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर.
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी.
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: साथियों, मानसून का महीना तो चल ही रहा है, तो ऐसे मौसम में भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में पानी आप जब भी पिएं तो आप उसे उबाल कर पिएं, और उबालने के बाद 10 मिनट ठंडा करने के बाद ही उसे पिएं, ताकि आपको पेट की कोई बीमारी ना हो। साथियों, काम के बाद अगर आपके कपड़े भीग जाते हैं तो घर आते ही उसे चेंज कर लें। गीले कपड़े पहनने से बुखार, जुकाम और खुजली हो सकती है। बारिश के मौसम में मक्खी और मच्छर बहुत हो जाते हैं, तो ऐसे में खाना खुला मत छोड़ें। बासी खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में उल्टी दस्त बहुत ही जल्दी पकड़े जाते हैं। कीचड़ में काम करने के बाद घर आकर पैर साबुन से धोकर उसे अच्छे से सुखा लें। पैर की उंगलियों में फंगस लग जाती है, तो ऐसे में आप वहां पर नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। पसीना और उमस आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो 1 लीटर पानी में चुटकी भर नमक और चीनी का घोल मिलाकर पी सकते हैं, या ORS का पैकेट भी डालकर पी सकते हैं। इससे आपको कमजोरी नहीं आएगी। शाम के समय पूरे कपड़े पहने, घर में कहीं भी पानी जमा ना होने दें। सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाकर रखें, इससे डेंगू मलेरिया से आप बचे रहेंगे। अगर कीचड़ वाले पानी में चोट लग जाए तो तुरंत साफ पानी और साबुन से धोकर उसे वहां पर दवाई लगा लें, वरना घाव में कीड़े पड़ सकते हैं। साथियों, बारिश के मौसम में बिजली के तार और खंभों से दूर रहें। गीले हाथों से कभी भी स्विच को ना छुएं, क्योंकि जान सबसे ज्यादा कीमती होती है और मेहनत तो ज्यादा होती ही है। इसीलिए रात को 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि थका हुआ शरीर जल्दी बीमार पड़ता है। तो साथियों, आप अपना ख्याल रखेंगे तो घर भी खुश रहेगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और सुनिए ये बरसात का गीत।

साथियों, हमने आपसे प्रश्न किया था कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। तो इसका जवाब है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो लगभग 3500 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। इसके अलावा मिस्र, सिंधु घाटी और चीनी सभ्यताएं भी दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती हैं।

तो साथियों, सावन के इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं पर संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी मनीषा अरोरा को यहीं पर दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल, मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और

0: और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा स्वास्थ्य सेवा उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी तथा कथित यौम इस्तेसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इस सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉप और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24,625 पर रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में ईशा रानी, बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिहा, अनमोल खरब और श्रियांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the

0: वार्ताकार हैं दिलीप रघुवंशी।
1: हिंदी साहित्य में इतिहास एवं पुराण कथाओं को लेकर आदिकाल से विपुल साहित्य रचा जा रहा है। हिंदी नाट्य जगत में इतिहास और पुराण की कथा वस्तु के आधार पर लेखन की परंपरा भारतेंदु युग से लेकर अब तक बनी हुई है। ये रचनाएं जनमानस पर अमिट छाप छोड़ने में अधिक समर्थ होती हैं। इसलिए नाटककार व रंगकर्मी अपने स्रोत सामग्री इतिहास में तलाश करते हैं। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही देखते हैं, परंतु इससे पूर्व पारसी थिएटर की एक लंबी परंपरा है। ओरिजिनल थिएट्रिकल कंपनी, विक्टोरिया थिएट्रिकल कंपनी आदि ने हिंदी को रंगमंच दिया और कई लेखक भी, आगा हश्र काश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, जौहर आदि लेखकों ने हिंदी रंगमंच के प्रचार प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। भारतेंदु और उनके सहयोगी नाटककारों ने पौराणिक नाटकों में रामायण और महाभारत को आधार बनाकर प्राचीन भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा स्थापित की। ऐतिहासिक नाटकों में जातीय प्रतिष्ठा एवं स्वाभिमान का स्वर मुखर हुआ। अंग्रेजी उपनिवेशवाद के दौर में भारतीयता का पुनरुत्थान व पुनर्प्रतिष्ठा समय की मांग के अनुरूप था। नील देवी, सत्य हरिश्चंद, भारत दुर्दशा, चंद्रावती, अंधेर नगरी भारतेंदु के कुछ ऐसे ही प्रमुख नाटक हैं। नील देवी 1881 में लिखा हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। भारतेंदु युगीन अन्य नाटककारों में श्रीनिवास दास के नाटक संयोगता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र, राधा कृष्ण के नाटक पद्मावती, महाराणा प्रताप, बालकृष्ण भट्ट के दमयंती स्वयंवर पद्मावती आदि नाटक हमारे गौरवमयी ऐतिहासिकता का बोध कराते हैं। भारतेंदु के पश्चात जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटकों को नए चरित्र, नई घटनाओं, नए ऐतिहासिक देशकाल और नए लक्ष्यों से जोड़ते हुए नाट्य सृजन किया। यशोधर्म देव एक बड़ा ऐतिहासिक नाटक प्रसाद ने लिखा। इसके अलावा अजात शत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि ऐतिहासिक नाटक रचे। विराट फलक वाले इन नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रसादकालीन अन्य नाटककारों ने भी इतिहास से अपनी विषय वस्तु चुनी। इनमें बद्रीनाथ भट्ट के चंद्रगुप्त, दुर्गावती, माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक कृष्णार्जुन युद्ध, माधव शुक्ल का सी स्वयंवर, विश्वनाथ कौशिक का भीष्म उल्लेखनीय है। प्रसादोत्तर नाटकों में परंपरा और प्रयोग को दो अलग अलग धाराएं स्पष्ट हैं। प्रसाद काल में नाट्य विधा दृश्य के बजाय पाठ्य होती दिखाई देती है। बाद के नाटककारों ने इस प्रवृत्ति में परिवर्तन किया और अपने नाटकों को रंगमंच से जोड़ने का सार्थक प्रयत्न किया। प्रसाद युग में जहां मौर्य गुप्तकालीन इतिहास पर अधिक जोर था, प्रसादोत्तर काल में राजपूत और मुगल कालीन इतिहास को विशेष महत्व दिया गया। सेठ गोविंददास और हरिकृष्ण प्रेमी ने वैदिक धर्म, संतों, राष्ट्रीय महापुरुषों आदि को आधार बनाकर नाट्य रचनाएं की। हिंदी नाटकों में इतिहास बोध स्वतंत्रता के बाद के दौर के नाटकों में अत्यंत प्रखरता के साथ आधुनिक संदर्भों में सामने आया। इनमें महत्वपूर्ण है मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जौहर की ज्योति, अज्ञे रचित उत्तर प्रियदर्शी, सुरेंद्र वर्मा कृत सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आठवां सर्ग, हबीब तंबीर के आगरा बाजार, हिरमा की अमर कहानी राजरक्त, मणि मधुकर लिखित एक तारे की आंख, सुशील कुमार सिंह का सिंहासन खाली है, भीष्म सहानी की कृति कबीरा खड़ा बाजार में, धर्मवीर भारती रचित अंधा युग। ऐतिहासिक नाटकों के समान ही पौराणिक नाट्य कृतियों की भी लंबी परंपरा समकालीन हिंदी नाट्य साहित्य की थाती है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के नाटक सूर्यमुख, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, दया प्रकाश सिन्हा का कथा एक कंस की,

0: दिलराज किशोर का प्रजा ही रहने दो, डॉक्टर नरेंद्र कोहली का शंभू की हत्या, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार इसी श्रृंखला में आते हैं। भारतेंदुकालीन ऐतिहासिक नाट्य साहित्य में उपदेशगत उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है। प्रसाद काल के नाटककारों ने इतिहास के प्रयोग में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है, साथ ही सांस्कृतिक बोध को जगाया है। वस्तुतः प्रसाद और उनके समकालीन नाटककारों के लिए इतिहास की सामग्री साध्य रही है और कारक साधन। स्वातंत्रोत्तर नाटककारों ने इतिहास का प्रयोग उन्हीं अर्थों में किया जिन अर्थों में वे आधुनिक भावबोध और नई संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर सके। यदि भारतेंदु काल के ऐतिहासिक नाटककारों की इतिहास दृष्टि आदर्शवादी चिंतन धारा है तो स्वातंत्रोत्तर नाटककारों का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण व्यक्ति यथार्थ से जुड़ा है। प्रस्तुति के समय दर्शकों को लगता है जैसे हम आज का नाटक देख रहे हैं। राजेंद्र रघुवंशी द्वारा लिखित नाटक नजीर शाह फकीर की प्रस्तुतियां आज भी जारी हैं। इस नाटक में आगरा इप्टा ने आगरा के 250 बरस के ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब बोली भाषा की समृद्धशाली परंपरा दिखाई देती है। विशेष बात यह है कि ऐसे तमाम सार्थक नाटकों की तरह ये कृति भी इतिहास की पृष्ठभूमि में आज के समय और समाज को संबोधित है। इसमें आज के कष्ट झेलते मनुष्य की सुख समृद्धि की कामना, उसके नायक नजीर अकबराबादी के स्वर में नाटककार की कामनाएं व्यक्त होती हैं। है मेरी हक से ये दुआ शाम और सहर, हुआगरे वालों पे भी अब मेहर की नजर, सब खावे पीवे शाद रहे अपने अपने घर, इस टूटे शहर पर भी इलाही तू फजल कर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रही थी वार्ता आधुनिक हिंदी नाटकों में इतिहास बोध। वार्ताकार थे दिलीप रघुवंशी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
9: घर सूर्य घर।
10: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में अनुपूरक बजट पास, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये के चलते सदन में नहीं हो सकी चर्चा। एनएचएआई ने

0: रायपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में जिम्मेदारों पर शुरू की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू। 12 अगस्त तक होगा पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। आज ही सदन में संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार की मंशा इस पर चर्चा करने की थी, लेकिन विपक्ष ने इसमें रुकावट पैदा की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी।
1: युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे, लेकिन सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है।
0: उधर विधान परिषद में आज उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-2027 का अनुपूरक विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 समेत 12 विधेयक पारित किए गए। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। अब स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR की तर्ज पर इस क्षेत्र का भी मास्टर प्लान तैयार कर समग्र विकास किया जाएगा। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विकास क्षेत्र में 6 जिले शामिल होंगे। प्रयागराज को जोनल केंद्र बनाया जाएगा, जबकि चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन और बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। कौशाम्बी को बौद्ध पर्यटन केंद्र, फतेहपुर को कृषि व्यापारिक केंद्र तथा बांदा को बुंदेलखंड का आर्थिक केंद्र बनाया जाएगा। वहीं हमीरपुर और महोबा को खनिज एवं औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में देखरेख करने वाली कंपनी और संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में NHAI के क्षेत्राधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि परियोजना के निर्माण और निगरानी में पाई गई कमियों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की जवाबदेही तय की जा रही है।
2: हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, जैसे कि कंसेशनायर का प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ थे, DGM हाईवेज को इमीडिएट सस्पेंड भी किए हैं और उसको 2 साल के लिए डिवार भी किया गया है। ये ऑलरेडी एक्शन 30 तारीख को ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं, उनके टीम लीडर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सुपरविजन में थे और अभी भी थे, और रेसिडेंट इंजीनियर, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और 2 साल तक के लिए उनको भी डिवार किया गया।
0: उन्होंने बताया कि फिलहाल सड़क धंसने वाले स्थान पर यातायात का डायवर्जन कर दिया गया है और वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से जारी है। सुधार कार्य पूरा होने तक यात्रियों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। टोल राजस्व की हानि की वसूली निर्माण और देखरेख करने वाली कंपनी से की जाएगी। मेडिकल परामर्श समिति ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू कर दिया है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों

0: के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा, प्रतिभा और कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। तकनीकी विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी

0: अध्यक्षता में आज गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा, प्रतिभा और कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। तकनीकी विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों के भवनों को एक रूपता के साथ डिजाइन किया जाए, साथ ही प्रत्येक संस्थान में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाए जिसमें विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए। ये समिति समय समय पर उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों की समीक्षा करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रही हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ, जौनपुर, हमीरपुर समेत कई अन्य जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियों के चलते आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के सभी जनपदों में 9 से 17 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष 5 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य है। एक रिपोर्ट।
1: हर घर तिरंगा अभियान में 6 से 8 अगस्त तक चलने वाले पहले चरण में स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगे से प्रेरित कलाकृतियों से सजाया जाएगा। 9 से 12 अगस्त के बीच होने वाले दूसरे चरण में प्रत्येक जनपद के तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसके अलावा तिरंगा महोत्सव, तिरंगा मेले का आयोजन भी किया जाएगा। तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त के बीच शिक्षण संस्थानों में रैलियां आयोजित कराई जाएंगी। मेरठ, चौरी चौरा, झांसी किला, बिठूर, रेजिडेंसी, बलिया, सुहेलदेव स्मारक पर 9 से 15 अगस्त तक विशेष आयोजन भी किए जाएंगे। इस अभियान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 2 करोड़ झंडों का निर्माण किया जाएगा। वहीं 1 करोड़ झंडे शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समूहों के माध्यम से तैयार कराए जाएंगे। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित राम दरबार में दर्शन के लिए पास व्यवस्था खत्म कर दी है। अब श्रद्धालु सामान्य दर्शन कतार से रामलला के दर्शन के बाद सीधे प्रथम तल पर स्थित राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अमरोहा में आज पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने थाना नौगांवा सादात क्षेत्र में मोटरसाइकिल से हरिद्वार जल लेने जा रहे कांवड़ श्रद्धालुओं को हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रियों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने समुचित व्यवस्था की है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए साफ सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश समेत अन्य व्यवस्थाएं भी कराई गई हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में अनुपूरक बजट पास, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये के चलते सदन में नहीं हो सकी चर्चा। एनएचएआई ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में जिम्मेदारों पर शुरू की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू। 12 अगस्त तक होगा पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो चुके हैं। वक्त हो चुका है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है उस पावन बेला का जब आस्था का दीप युगों युगों तक प्रकाश देता है। स्वागत है उस क्षण का जब इतिहास श्रद्धा के सामने नतमस्तक दिखाई देता है। दोस्तों, आज की प्रभात केवल एक सुबह नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों का उज्ज्वल स्मरण थी। जब भी सत्य संकट में पड़ा, जब भी धर्म ने पुकार लगाई, तब तब श्री राम का आदर्श मानवता के लिए मार्गदर्शक बनकर सामने आया। 5 अगस्त का ये दिन हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब अयोध्या की पावन भूमि पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ हुआ और हमारे लिए ये शुभ दिन आया।

दोस्तों, 5 अगस्त का ये दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की आस्था, विश्वास, धैर्य और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। आज हम याद कर रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण को जब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य निर्माण का शुभारंभ हुआ। राम केवल एक नाम नहीं, राम भारत की आत्मा है। राम केवल एक व्यक्तित्व नहीं, वे मर्यादा, सत्य, त्याग और आदर्श जीवन के अमर प्रतीक हैं।

श्रोताओं, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या की पावन धरती पर भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। ये क्षण सदियों से संजोए गए विश्वास और धैर्य का ऐतिहासिक अध्याय था। प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ ना छोड़ें। श्री राम का जीवन हमें कर्तव्य, करुणा, विनम्रता और राष्ट्रहित का संदेश देता है।

0: देगा और राष्ट्र और भी अधिक सशक्त बनेगा। जिस घर में राम बसते हैं वहां सुख का होता है वास। राम के आदर्श अपनाएं, यही है हमारा विश्वास।
1: होशिया।

दोस्तों, आज आवश्यकता केवल मंदिर को देखने की नहीं, बल्कि अपने भीतर सेवा का मंदिर बनाने की है। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में श्री राम का एक भी गुण अपना ले, तो परिवार में प्रेम

0: दोस्तों, राम केवल अयोध्या में नहीं है, राम हर उस हृदय में है जहां सत्य है, जहां सम्मान है। राम हर उस समाज में है जहां प्रेम, सेवा और करुणा है। दोस्तों, जब हमारे सामने कई चुनौतियां होती हैं, तब श्री राम का संदेश हमें सिखाता है कि हम हमेशा सत्य का साथ दें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें आदर की नजर से देखें, राष्ट्र को सर्वोपरि रखें, सभी धर्मों का और मानवता का आदर करें, अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में हमेशा योगदान करें, समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाएं, तभी तो सार्थक करेंगे हम श्री राम के आदर्शों को।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात,

श्रोताओं, हम अपने राष्ट्र की एकता, संस्कृति और मानवीय मूल्यों की रक्षा करेंगे और अपने जीवन को प्रभु श्री राम के आदर्शों के अनुरूप बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर घर में संस्कार हो, हर हृदय में प्रेम हो और हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो इन्हीं चंद बातों के साथ दीजिए अनुमति इस वादे के साथ, कल फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। तब तक स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो साथी पूनम कुलश्रेष्ठ का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संसद समीक्षा। प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

अफसर फिरोजी से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी

के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉक्टर एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते ना देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तनखा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम,
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी

शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्जवल निकम आदि ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल हैं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह

0: करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार्य बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे। हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:15 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देश गान, मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:20 होने को है। अब आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से विधानमंडल समीक्षा, प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: दीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव।
1: इस बार विधानसभा का मॉनसून सत्र काफी संक्षिप्त रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मॉनसून सत्र 4 दिन के बजाय 3 दिन में ही समाप्त हो गया। इसी शोर शराबे और हंगामे के बीच जहां विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं विपक्ष ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर सरकार को घेरा। सपा सदस्यों द्वारा मंगलवार को नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान किए गए शोर शराबे और हंगामे को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने असंसदीय बताते हुए क्षोभ व्यक्त किया। बावजूद इसके चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर सपा के सदस्य आज फिर वेल में आकर शोर शराबा और हंगामा करने लगे। सपा सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 1.5 घंटे तक बाधित रही। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य फिर चढ़ावा

0: चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच ही सदन में जहां सारे विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। आज ही सदन में संबल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। इससे पूर्व सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शोर शराबे और कल की घटना पर क्षोभ जताते हुए कहा कि कल जो कुछ भी हुआ वो संवैधानिक संस्था के लिए उचित नहीं था। हमें यह तय करना होगा कि हम अगली पीढ़ी को विरासत में क्या दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष, विपक्ष, संवाद, सहमति और असहमति हो सकती है, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में हमारी ये पूरी कोशिश रही है कि संविधान की गरिमा और उसकी महत्ता के अनुकूल सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि वाद विवाद, सहमति और असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा हमें ध्यान में रखनी होगी। संसदीय आचरण की परिधि लांघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है। उन्होंने कहा कि कल जो सदन में हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि यहां आप सब लोग पार्टी से ऊपर उठकर विचार रखें कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम विरासत में क्या परंपराएं छोड़ रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा एवं उनके सपनों को कितना सार्थक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मना करने के बाद भी सदस्यों ने मीडिया और सोशल मीडिया को यहाँ के वीडियो और फोटोग्राफ्स दिए हैं, उसे प्रसारित किया गया है, ये आपत्तिजनक है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया था। इस दौरान सपा के विधायक इंजीनियर सचिन यादव मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला एक पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद उनका निलंबन किया गया था। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि उनके दल के सदस्यों ने 2 घंटे तक अनुनय विनय किया, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो सदस्यों को वेल में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में 311 में स्पष्ट है कि सदन के सारे काम रोककर किसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कराई जा सकती है। यदि कल इस मुद्दे पर चर्चा हो जाती तो ये स्थिति उत्पन्न न होती। इस पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सदन में कल जो भी हुआ वो लोकतंत्र का हिस्सा था। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा सपा सदस्यों के आचरण पर व्यक्त किए गए क्षोभ पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में आपने सदन का संचालन सुचारू रूप से किया है। उन्होंने कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि पिछले 4.5 सालों में यूपी विधानसभा का कार्य चालन देश की बाकी विधानसभाओं के लिए नजीर बना।
1: यह थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के सभापतित्व में शुरू हुई। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश में योगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण छात्रों के आंदोलन पर सरकार की नीति का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर आशुतोष सिन्हा ने कहा कि यहां लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। गरीब, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर अपनी वर्षों की जमा पूंजी खर्च करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का पेपर लीक होकर परीक्षा रद्द हो जाती तो युवाओं का विश्वास टूट जाता है। पिछले 9 वर्षों में 20 से अधिक परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द हुई। लाल बिहारी यादव ने कहा कि पेपर लीक गंभीर विषय है, छात्र आंदोलित है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सपा सदस्य शिक्षा और परीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा में सुधार और पेपर लीक की घटनाओं को कैसे रोकें इस पर कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये देश के 30 करोड़ नौजवानों से जुड़ा विषय है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले देश में कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, ये मुद्दा नया नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है, सपा इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। कई बार टोकाटोकी और विरोध के बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने उन्हें शांत रहने का निर्देश दिया, लेकिन सपा सदस्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से

वॉकआउट कर गए। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालय, सरकारी प्राइमरी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को छात्रों की अपार आईडी बनाने में होने वाली कठिनाइयों का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। ग्राह्यता पर राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में सार्वजनिक संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार का ध्यान इस अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि प्रदेश में चारागाह, नदी, तालाब एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि के आवंटन की व्यापक जांच कराई जाए।

0: सार्वजनिक उपयोग की भूमि के आवंटन की व्यापक जांच कराई जाए। जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन कर भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर पट्टे दिए गए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर विभागीय एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही ऐसे सभी अवैध पट्टों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए तथा सार्वजनिक भूमि को पुनः राजस्व अभिलेखों में मूल स्वरूप में दर्ज कर उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में चारागाह, नदी, तालाब एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अवैध आवंटनों की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। भोजनावकाश के बाद सभापति सलिल विश्नोई के सभापतित्व में बैठक हुई। कार्यसूची की मदों को निपटाया गया। याचिकाओं को याचिका समिति को संदर्भित किया गया। प्रमुख सचिव विधान परिषद ने 12 विधेयकों को सदन की मेज पर रखा, जो ध्वनिमत से पारित हुए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-27 का अनुपूरक विधेयक 2026 भी पारित हुआ। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं 8:30 हुए हैं, वक्त है फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं सिंघम फिल्म से श्रेया घोषाल और अजय की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है अजय अतुल ने।

श्रोता हूँ, वांटेड फिल्म से ये गीत आपने सुना शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। अरुण भैरव की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था साजिद वाजिद ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं दबंग फिल्म से ये गीत राहत फतेह अली खान के स्वर में। बोल लिखे हैं फैज अनवर ने, धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, दबंग फिल्म से ये गीत आपने सुना, राहत फतेह अली खान के स्वर में। फैज अनवर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था साजिद वाजिद ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में।

0: और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित

0: उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
4: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने

0: के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म टेलीविजन प्रसारण डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपये और 13 पैसे पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had

0: Dr. L. Murugan stated this in a written reply in the Lok Sabha today. In reply to another query, Dr. L. Murugan informed the lower house about the journalist welfare scheme being implemented by the government to provide one-time ex gratia relief on urgent basis to journalists and media personnel or to their families in the event of extreme hardship arising out of death, permanent disability, serious ailments and accident-related hospitalization. The Monetary Policy Committee, MPC of the Reserve Bank of India, RBI, has decided to keep the key policy repo rate unchanged at 5.25%. Making the announcement today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the MPC also decided to keep the stance neutral while hiking the growth projection marginally to 6.7% from 6.6% and reduced the inflation forecast to 5% from 5.1% in the current financial year. Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. We have a report.
1: The Sensex gained 152 points to close at 78,581. The Nifty rose marginally by 10 points to settle at 24,625. Meanwhile, in the forex market today, the rupee appreciated by 25 paise to end at 95 rupees and 13 paise against the US dollar. With Intikhab's report, Gaurav Dhawan Lal for Akashwani News.
0: In sports, India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan, with seven players advancing to the second round of women's singles, while all six men's singles players crashed out in the opening round. In the women's singles, Anmol Karb, Tanvi Sharma, Mansi Singh, Rakshita Ramraj, Ashmita Chaliha, Isha Rani Barua and Shreyansi Valishetty progressed to the second round with impressive victories. However, in the men's singles, former world number one Kidambi Srikanth, Mithun Manjunath, Kiran George, Ronak Chauhan, Sanit Dayanand and Tarun Manepalli all suffered first round defeats. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic, West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa tomorrow. The IMD has forecast heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, coastal Karnataka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Karb among seven Indians to enter second round of women's singles. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद, डीप फेक मवाद और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम ने मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे और भारत के उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और अनमोल खर्ब समेत भारत के 7 खिलाड़ी खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में बहस के बाद इस बिल को वापस लोकसभा भेज दिया गया। लोकसभा ने इस बिल को पीर के रोज

0: बुनियादी ढांचों में तौसी हुई है और तालीम, हिफ्जान सेहत, सनतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मौके में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि खवातीन और हाशिए पर रह रही बिरादरियों और उन अफराद को जिन्हें दहाइयों से बुनियादी आईनी हकूक नहीं दिए गए, उन्हें आईन के मुकम्मल नफाज से बाख्तियार बनाया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की तरक्की के हुकूमत के अज्म का इरादा किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर शहरी को विकसित भारत के लिए बड़े ख्वाब देखने, उन्हें शर्मिंदे ताबीर करने और इस सिलसिले में ताउन करने का मौका हासिल हो। दफा 370 को मनसूख किए जाने के 7 बरस मुकम्मल होने के मौके पर कानून इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस तारीखी कदम से जम्मू कश्मीर में तरक्की में तेजी आई है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश हैं।
0: दफा 370 को मंसूख किए जाने के 7 बरस बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, हुक्मरानी, सियाहत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी में खातिरखा तरक्की हुई है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, अवामी खिदमात और इकतसादी तरक्की के जरिए यकसर तब्दीली आई है जिससे हुक्मरानी और मेयार जिंदगी बेहतर हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब पुलिस ने तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर को निशाना बनाने के सिलसिले में दहशतगर्दी के एक सरहद पार ग्रुप के मंसूबे का पर्दाफाश किया है। अमृतसर पुलिस की जानिब से पता लगाए गए आईएसआई के हामी सरहद पार दहशतगर्दी के दो ग्रुपों ने तहकीकात के दौरान इंकशाफ किया कि वो पेट्रोल बमों के साथ एहतजाज के मकाम पर हमला करने के इरादे से दिल्ली गए थे। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हिरासत में लिए गए 9 अफराद में से 4 कम उम्र के हैं और उन्हें आईएसआई के आकाओं ने तरबियत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मालियाती पॉलिसी कमेटी ने आज अपनी पॉलिसी मीटिंग के अख्तिताम पर अहम पॉलिसी रेपो रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है और इसे 5.25% बरकरार रखा है। फैसलों का ऐलान करते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि एमपीसी ने अपने रुख में भी कोई तब्दीली न करने का फैसला किया, जबकि मौजूदा माली बरस में तरक्की की शरह के तखमीनों को 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने आज मगरबी एशिया और दीगर खित्तों में बदलती हुई सूरतहाल के दरमियान भारतीय मल्लाहों की सलामती और सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए सीनियर अहदेदारान के साथ आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सोनवान ने कहा कि मरकज ने मुसलसल मल्लाह पहले का तरीक़ेकार इख्तियार किया है जिसके सबब दुनिया भर में मल्लाहों की खिदमात फराहम करने वाला भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बना है। उन्होंने कहा कि डीजीकॉम सेंटर मुसीबत के वक्त अलर्ट की निगरानी करने और बचाव कार्रवाइयों में तालमेल की खातिर हर वक्त काम कर रहा है। जारी बहरान के दौरान फंसे हुए 4,000 से ज्यादा भारतीय मल्लाहों को बहिफाजत वापस लाया गया है, जबकि हंगामी सूरतहाल में कार्रवाई करने वाले वसीलों ने 16,000 से ज्यादा कॉल्स और 40,000 ईमेल का जवाब दिया है। भारत ने आज पाकिस्तान को मशवरा दिया कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में खूनरेजी बंद करे, अपनी सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और ठोस कार्रवाई करे, नीज भारत के उन तमाम इलाकों से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल पाकिस्तान के वजीर खारजा की जानिब से नाम नहाद यौम इस्तेहसाल से मुतालिक दिए गए बयान पर सहाफियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की जानिब से नाम नहाद यौम इस्तेहसाल मनाने की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अटूट और नाकाबिले तनसीख हिस्सा रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को किए गए आईनी इकदाम भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को इन इकदाम पर तबसरा करने का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी इस वक्त पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू

0: मौसमियात के महकमे ने कल अंडमान व निकोबार जजायर, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के साहिली इलाके, मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश से शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों, जनूबी कर्नाटक, जैली हिमालयाई इलाके, मगरी बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में इसी तरह की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। जनूबी कोरिया के आसन में जारी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी मिलीजुली रही। खवातीन के सिंगल्स में सभी 7 खिलाड़ी दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब रहीं। वहीं मर्दों के सिंगल्स में सभी 6 खिलाड़ी इफ्तिताही राउंड में ही बाहर हो गए। खवातीन सिंगल्स में अनमोल खर्ब, मानसी सिंह, रक्षिता रामराज, अश्मिता चलिहा, ईशा रानी बरवा, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वैलिशेट्टी ने शानदार जीत के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली। अनमोल खर्ब ने हांगकांग चीन की लोसिन यान को हराया, जबकि मानसी सिंह ने कोरिया की किम जू योन को शिकस्त दी। रक्षा रामराज ने कोरिया की यून यू को, जबकि अश्मिता चलिया ने जापान की रेरिना हिरामोतो को हराया। ईशा रानी बरवा ने कोरिया की ली सो ही को, वहीं तन्वी शर्मा ने चीन की एंग की युआन को शिकस्त दी। श्रियांशी वेलिशेट्टी भी चीनी ताइपे की यूपो पी को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पहुंच गई। हालांकि आकर्षी कश्यप को राउंड ऑफ 32 में कोरिया की खिलाड़ी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। खवातीन के डबल्स के मुकाबले में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर कोरिया की जोड़ी को हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गए। मिक्स डबल्स में छठे दर्जे की शरूति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अपने हमवतन खिलाड़ी सत्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को शिकस्त देकर अगले राउंड में दाखिल हो गए। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी एहसास मुतालिक मवाद, डीप फेक और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के साथ साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम ने मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वह अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझकर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे? क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई

0: छीन सकती है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
2: जी नमस्कार
0: शरद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो। आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या है।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए, म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देके उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता है अब जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनलियों की फ्रॉड करना चाहता है उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा, अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
0: जी हाँ बिल्कुल। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा।
2: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलिजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। पुलिस साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता। इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इंप्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेन कर रहा है कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
0: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे, जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके। शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
1: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय

0: पता होता कि हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पर डाल देंगे, हम एआई से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, तो जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया है 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का, पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं, बहुत जल्दी एक्ट करना। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाएं, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरने के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो एसओपी जारी किया है, उस एसओपी में क्या क्या चीज है, आप देखिए, अगर एसओपी को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, एफआईआर भी करेंगे, और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, यूपीआई से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से, जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है, जी हमें क्या पता, वो तो आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई, लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास, तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा, देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स इसको हम बोलते हैं, उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज, ये भी कहा गया आनंद, के स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बाकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से एक कम से कम समय में सर्कुलेट कर दें, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट, क्योंकि देखिए होता क्या है, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं, उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगा, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है, इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है, तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
2: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड है वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्ट

0: नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट्स कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है, कि जो एक डिले, 1 घंटे के डिले पेमेंट जो है का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप 1 घंटे के बाद वो जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो 1 घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या है होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वो ऑल इंडिया एक लाइन है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से वो हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं। और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डिवेलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
2: देखिए, आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कलेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अनटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए। उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी, किसी आम आदमी को यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिसपे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जब हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं तो FIR करने में डिले होती है, इसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, अब मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है। अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक। तो इसमें स्पीड स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हों। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए, अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डी फ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी कि रिकवरी रेट बहुत कम है, मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूँ 1 लाख रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12-12 हजार, 12,500 इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10 हजार रुपए, 5%, 10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी हम

0: बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें, वहां बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर रहे हैं, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट में लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है, यहाँ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम है जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो केवाईसी की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, ई केवाईसी भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
2: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डिलिजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट्स पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू खोल जाते हैं। बीसी मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहां होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है, या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है, और दूसरा, सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के जमाने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है। पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

0: सकते हैं इस पूरे परिदृश्य में, दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
1: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है। तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है ज्यादातर, तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलिजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास फोन नंबर भी, सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया। अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया है कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट्स मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, ये सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से एआई टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहां पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है, जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को, ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करें, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या मैं कहता हूं, अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं, यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
0: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये RBI को SOP बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
2: नहीं नहीं बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है, तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहें कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें,

0: क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहें।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है। साइबर ठगी से बचने के लिए, आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
2: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है। और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती। याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद,
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं भूल भुलैया फिल्म से श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाजों में।

श्रोताओं, देवदास फिल्म से ये गीत आपने सुना उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। नुसरत बद्र की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था इस्माइल दरबार ने। कार्यक्रम में अब सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत, कुमार सोनू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में। इस्माइल दरबार के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं महबूब ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में बंटी और बबली फिल्म से ये गीत आपने सुना, उदित नारायण, सुनिधि चौहान और नेहराज जोशी की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं पंडित राजन साजन मिश्र से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग दरबारी कानड़ा और राग बिहाग। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं पंडित राजन साजन मिश्र से राग दरबारी कानड़ा में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन साजन मिश्र से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग दरबारी कानड़ा। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पंडित राजन साजन मिश्र से राग बिहाग में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन साजन मिश्र से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग बिहाग। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश हैं।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन करकर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है

0: जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretations issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour for a timely reform. The strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. Earlier in the day, the Upper House witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid, and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks and communication tools, Mark Zuckerberg today sent his apologies to the Government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 30.